नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन मंगलवार शक संवत 1948 दे वैशाख महीने दी 29 तारीख, तदनुसार ईस्वी सन 2026 दे मई महीने दी आज 19 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 होए ने। साढ़े अज के प्रोग्राम हुण शुरू होंदे ने ते असी अपने सारे ही स्रोतियां दा इस सभा दे विच बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

सवेरे 10 बजे FM न्यूज हेडलाइंस और उस तो ठीक बाद प्रोग्राम गीत बहार। सवेरे 11 बजे FM न्यूज हेडलाइंस और उस तो ठीक बाद तुहाड़ा मन पसंदीदा लाइव फोन इन प्रोग्राम लेके हाजिर हो जावांगे पंजाबी तड़का। दोपहर 12 बजे दे FM न्यूज हेडलाइंस सुनने तो बाद तुहाड़ा मन पसंदीदा प्रोग्राम जिस दे विच तुहाड़े प्यारे घर नूं होर ज़्यादा प्यारा ते खूबसूरत बनाउण दे लई टिप्स देवांगे। प्रोग्राम रहेगा होम स्वीट होम। दोपहर 1 बजे मिड डे मेलोडीज। प्रोग्राम दरमियान 1:40 तो 1:50 तक पंजाबी खबरां। दोपहर 2 बजे दिल आज शायर है। इस नाल ही दोपहर 3 बजे तुहानू लै चलांगे FM रेनबो दिल्ली केंद्र साडा खास प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर।

शाम 4 बजे FM रेनबो जलंधर केंद्र तो प्रोग्राम हैलो जलंधर युवा दोस्त लैके आएंगे प्रोग्राम युववाणी शाम 5 बजे शाम 6 बजे साड़ा खास द इवनिंग शो लव यू जिंदगी प्रोग्राम दरमियान 6:20 तो 6:30 तक प्रादेशिक खबरां शाम 7 बजे ताज़ा खबरां तो जानकारी ले पाऊंगे FM न्यूज हेडलाइंस के जरिए और उस ठीक बाद फिल्मी दुनिया रात 8 बजे FM न्यूज हेडलाइंस ते नाल ही प्रोग्राम रंगला पंजाब रात 9 बजे FM न्यूज हेडलाइंस और उस तो बाद तो हड्डियां फरमाइशा ते आधारित प्रोग्राम दिल चाहता है रात 10 बजे प्रोग्राम शामे गजल और 10:30 बजे साड़ी सभा दा आखिरी प्रोग्राम लेके हाजिर हो जावांगे एक प्यार का नगमा है ते हुन समा हो गया है भक्ति संगीत दे नाल सजे हुए प्रोग्राम वंदना नू सर्वन करन दा बने रहो 102.7 FM रेनबो ते

परमात्मा दा नाम ऐसा है कि जिस भी मन दे अंदर उह वसदा है उह मन ते उह जीव पवित्र हो जांदा है, क्योंकि इंसान दा मन दर्पण दी तरह है। जेकर असी अपने मन दे विच परमात्मा दा वास रखांगे ते सानू हर जीव दे अंदर उस परमात्मा दा अंश दिखेगा भी ते महसूस भी होएगा।

मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी बेदन तू जानता साहा, अवर क्या जाने कोई रहा। परमात्मा जानता है कि जेकर सानू उस दे दर्शन दा आनंद मिल जावे तो साढ़े दिल की जो भी पीड़ है वह दूर हो जाती है, क्योंकि साढ़े दिल के अंदर जो दुख है, जो तकलीफ है, सिर्फ परमात्मा उसनों जानता है। उस दे बिना कोई होर नहीं जान सकता।

FM-band 102.7 MHz से नालन होने से 103.6 MHz से आकाशवाणी अमृतसर के श्रोतियों का भी निघा स्वागत कर दिया। तुसी सुन रहे हो FM रेनबो जलंधर 102.7 अते 103.6 MHz से।

तेरे दासरे को किसकी काण, जिसकी मीरा रखे आण। जदों असीं परमात्मा नूं सच्चे मन दे नाल अपना मन लैंदे आ ते हर मुसीबत दे विच, मुश्किल दे विच बिना घबराए उस ते यकीन रख के उस नूं सच्चे मन दे नाल पुकारदे आ, परमात्मा अपने उस भगत दी पुकार ते जरूर उसदी मदद दे लई आउंदा है।

चिंतित ही दिसे सब कोई, चेत है एक तही सुख होए। जिंदगी दे विच बहुत सारिया चिंतावां रहिंदियां ने हर दम, लेकिन इस चित दे विच जेकर परमात्मा दा चिंतन कीता जावे, उसनू चेते कीता जावे, तां ही सुख है। क्योंकि प्रभु दे नाम सिमरन दे नाल मन नू, तन नू ते चित दे विच जिन्ने भी कष्ट कलेश ने, उनां नू दूर करन दी ताकत परमात्मा दे नाम दे विच ही है।

अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जैसे कोई खूबसूरत सुबह जुड़ी हो किसी हसीन शाम के साथ। ये नाम जदों मैं बोल दी आ ना, मैं सिर्फ बोल दी किथे आ, मैं फील कर दी आ। ये नाम है ही इन्ना प्यारा, इन्ना खूबसूरत ते बिल्कुल दिल चुतरन वाला, क्योंकि ये नाम जदों ये कन्ना च पैंदा है ना, तो हाड़े चेहरे ते भी एकदम बिल्कुल ब्रॉड स्माइल आ जाती है, आंदी है ना। सो इसी नाम नु सुनने दे लई तुसी ट्यून करदे हो जी FM रेनबो 102.7 और फिलहाल 103.6 दे प्यारे प्यारे लिसनर्स ट्यून कर चुके ने, यानी कि अमृतसर वाले साढ़े प्यारे प्यारे लिसनर्स 6:30 तो लेके 10 तक बने रहेंगे साढ़े नाल और इससे ही फ्रीक्वेंसी दे जरिए। सरहद पार तो भी प्यारे प्यारे लिसनर्स ट्यून कर देने FM रेनबो जलंधर नू, और किवें भूल सकते हैं उन्होंने जिन्होंने स्पेशली मेहनत दे नाल मैनुअली ट्यून करके न्यूज़ आनी है यार ऐप तो FM रेनबो जलंधर नू कीता है जी ट्यून इन। सो ये नाम इन्ना प्यारा है ना FM रेनबो, बिल्कुल इंद्रधनुष दे सारे रंगा दे सुमेल वाला ये चैनल आंदा है तो हाड़ी ते साड़ी जिंदगी दे विच सारे ही रंग भरन। सो ट्यून कर चुके हो जी तुसी तो हाड़ा ते मेरा फेवरेट वाला रेडियो स्टेशन FM रेनबो, और न्यूज ऑन AIR ऐप दे जरिए देशा विदेशा दे कोने कोने तो जुड़दे ने साड़े प्यारे प्यारे लिसनर साड़े नाल। और फिलहाल माइक ने इस पार सुन रहे हो तुसी मेरी आवाज, हाँ जी पहचान लिया की क्या, हाँ जी चलो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं पछाणे उन्होंने दसना तो बनता है ना, बिल्कुल दसना बनता है भाई, क्योंकि मैं शायरी जिहड़ी सुनाई सी ना अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, ते ये नाम कटे बोलन च ज्यादा मजा आंदा है। सो FM रेनबो दे इस माइक ते फिलहाल सवेर दे 5:53 तो शुरू कर चुकी है सफर तुहाड़ी दोस्त RJ पूजा टोहानी, लेके हाजिर हाँ जी तुहाड़ा फेवरेट वाला डेली वाला मॉर्निंग इनफोटेनमेंट वाला शो गुड मॉर्निंग जलंधर, जिसे चुंदी है इनफॉरमेशन ते एंटरटेनमेंट दी फुल ऑन डोज, ते नाल दी नाल मेरिया गल्ला बातों दा सिलसिला जारी रहंदा है ठीक 10 तक। हाँ जी गुड मॉर्निंग जलंधर 1.5 घंटे दा सफर 8:30 तक, जिस विच सारियां तरह दियां आपां इनफॉरमेशन जिन्नियां कि तुहानूं दे सकदी हां मैं कोशिश करूंगी फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस वालियां शेयर करां तुहाडे नाल। 8:30 सुनोगे खबरां 10 मिनट दे लई, और जिवें ही 8:40 होणगे जिस सैगमेंट दा तुहानूं बेसब्री दे नाल रहिंदा ना इंतजार, बस उही सैगमेंट हुंदा है 8:40 तों 9 तक, जिस दे विच तुसीं अपना वर्कआउट सैशन कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि मेरी कोशिश रहेगी कि तुहाडियां जिम दियां या फिर जिहड़ा वर्कआउट वाली कैलरीज आ ना अज मैं तुहानूं घर बैठे कंप्लीट करवा देवां, बर्न करवा देवां कैलरीज थ्रू द पंजाबी बीट सॉन्ग्स सेगमेंट रहेगा अड्डी टप्पा। 9 मेरे तो ही न्यूज हेडलाइंस सुनूंगे और उस तो ठीक बाद प्रोग्राम होएगा ओही जिसका तुहानूं रहिंदा है जी बेसब्री दे नाल इंतजार ते मैनूं भी।

जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

मेरी भी है कोई, पर मेरी तमन्ना पता की है, मैं होनी तुहानू दस दी हाँ, एक तो काले ही बड़े पै जाने तुसी भाई। तमन्ना तो यही है कि जिनी बार गर्मी है ना उन्नी फिर साढ़े स्टूडियो दे विच असी कुल्लू मनाली वाली फीलिंग लै रहे हैं। इदां दी रियल दे विच हो जावे फीलिंग सारिया नू ही, इन्नी कते तमन्ना मेरी, क्योंकि मई महीने दे विच पहली बार जिहड़ा पारा है ना मेरा नहीं, मैं गर्मी दे पारे दी गल कर रही हाँ, 42 डिग्री पहुँच गया। 26 साल दे विच 5 डिग्री तक गर्म हो गया जी साडा शहर। शहर च हो की रहा मैं तो समझ नहीं आती पी, शायद इदा ही हो रहा है क्योंकि पेड़ पौद्या के नाम तो मैं कुछ खास ग्रीनरी कितने नज़र आ नहीं रही। तो आनू आ रही है तो प्लीज़ मैं दस दौ कितने कितने गया। और अगले 6 दिन तक बहुत ज़्यादा लू चलन की चेतावनी हैगी है।

0: वैसे तो पता ही है कि गर्मी है ही बहुत ज्यादा, पट्ठी दी तरह सब कुछ तप रहा है, पर इस विच ये देखिया कि जिन्नियां जिन्नियां क गर्म हवावां चल रही ने, इना गर्म हवावां दे लू दे थपेड़ियां दे नाल साडा इदां दा बुरा हाल है, ते ए जिहड़े विचारे पशु पंछी ने आवारा उहनां दा की बणदा होगा। सारे शहर दे विच सी आ, सारे पासे कंक्रीट ही कंक्रीट, सीमेंट ही सीमेंट है, और किन्ना ज़्यादा वो तपदा है। हुण मिट्टी ते रही नहीं है, कच्चियां सड़कां ते रहियां नहीं है, ते उहनां दे बैठण नूं हर पासे चमड़ी साड़न वाली गर्मी है, उत्तों भी और जिहड़ा फर्श तपदा है वह भी। और असी इन्ने क चंगे हाँ कि असी उन्हां विचारियां दे लई ना पीण दे लई पानी का इंतजाम करके कितें रखते हाँ, तो ना ही उन्हां नूं विचारियां नूं कितें छावें बहन दिंदे हाँ। किन्ने क चंगे इंसान आप सोच सकते हैं ना आपां। आप सारे नूं पता कि असी की चंगा काम करते हाँ, सानूं पता हुंदा है, और कई बार असी खुद आप तो करते नहीं हुंदे, दूसरे का भी किया हो बर्दाश्त नहीं हुंदा। ते फिर मैनू दसो हीट दा ग्राफ उपर जावे कि थल्ले आवे, कुदरत है बई, देख के अखां बंद किन्नी क देर कर लेगी। कुदरत नूं ते सारे जीव प्यारे ने, उन्ने ही असी और उन्ने ही बाकी। सो अगर चाहते हो कि कुदरत दा जिहड़ा मिजाज है इदां दा ही ना रवे, थोड़ा ठंडा हो जाए, तो प्लीज़ हमेशा दी तरह हर बार हर प्रोग्राम च रिक्वेस्ट करदी हां कि ज़्यादा तो ज़्यादा पौधे लगाया करो। इस बार दा पौधा अगली बार तक पेड़ बनन तक जा सकता है, और हौली हौली जिवें जिवें वधेगा तुहाड़े दिल नूं भी बहुत ठंडक सुकून ते शांति मिलेगी। और जिवें मैं हमेशा कहनी हां कि इदां भी हो सकदा कि तुसीं जिहड़ा भी पेड़ या पौधा लगाओ, मतलब पौधा लगाओगे कल वो पेड़ बनेगा, उसनूं तुसीं अपने बच्चों की तरह है ना पाल सको, उसे नाल एक कनैक्शन बनाओ, डेवलप करो इदां दा कनैक्शन अपने किसी प्यारे दे नाम नूं, तुसीं उस नाम दे नाल उस पौधे नूं वड्डा हुंदे देख सकदे हो, गल्लां करिया करो। इट्स काइंड ऑफ हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी दे विच ये चीज़ां एंड प्रकृति दे नाल जदों जुड़दे हो तो मैजिकल वे दे विच सानूं हील करदियां ने, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मैंटली एंड इमोशनली भी, और ऐदा ही असी स्ट्रोंग बनते हैं। सो कुदरत सानूं हर तरीके दे नाल स्ट्रोंग बनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन असी असी की करते हैं, सोचना तो पड़ेगा, सोचो ते जब तक तुहाड़े लिए गाना प्ले कर दें। और इस थॉट नू एक थॉट जरूर दियो 5 मिनट काढ़ के, और फिर टाइम काढ़ के पौधे जरूर लगाइयो आसपास, और उन्होंने नाम जरूर दियो, जो भी इंसान या शख्स तुहानू पसंद है उस नाल तुसी फिर रोज़ गल्ला करया करूंगे तो चंगा लगेगा, थोड़ा सा भी मिलेगा। पूजा चौहानी दिनाल, गुड मॉर्निंग जलंधर, FM रेनबो दे, स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द ट्रैक।
1: Hey, yo.

रहो हर बार बार बार हर बार साड़ी तियां दी जित होवे जिस भी फील्ड विच पैर रखन बस जित के ही वापस आउण सलामती दी दुआ उन्हां दे लई वेलकम बैक सो जी ट्यून कीता होया तुसी एफएम रेनबो नूं और मैं हां तुहाडी दोस्त आरजे पूजा टोहानी फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है जी गुड मॉर्निंग जलंधर मेरे नाल और टाइम हो गया है जी तुहानू दसण दा कि अज इस गाने तो बाद जिहड़ा मैं हुणे प्ले करूंगी साडे टॉपिक ते एक्सपर्ट बिल्कुल रेडी ने सो अज गल होएगी जी साडी बायोडाइवर्सिटी ते बायोडाइवर्सिटी शिवालिक इकोसिस्टम पंजाब दे विच किदां दा है की चेंजेस आ चुकियां ने ये सब कुछ की है और किस तरह इफेक्ट हो रहा है की चेंजेस लियाउणियां जरूरी ने या आ चुकियां ने और इस बारे गल करन दे लई रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर हरजिंदर सिंह रोज जी इन्हां दे नाल आपां गलबात करांगे सो तुसीं जाना किते नहीं है स्टे ट्यून रहना है तुहाडे लई गाना प्ले कर दिया गाने तो उस पार साडे खास मेहमान साडे नाल फोन लाइन ते होणगे स्टे ट्यून एंड एंजॉय द ट्रैक

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार ते खोज शिखर सम्मेलन विच भारत EFTA समझौते तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर दे निवेश ते 10 लाख नौकरियां पैदा करन दा सद्दा दित्ता है। प्रधानमंत्री अज तीजे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन विच सारे 5 नॉर्डिक देशां दे नेतावां नाल मुलाकात करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर नूं भारत दा मजबूत आत्मविश्वासी ते समर्थ राष्ट्र बनन दा प्रतीक दस्या। जस्टिस यशवंत वर्मा नाल संबंधित इल्जामां दी जांच कर रही जजां दी जांच कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नूं अपनी रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने माली बेनीमिया दे मामले विच आरजी कार मेडिकल कॉलेज दे साबका प्रिंसिपल संदीप कोच ने मुकदमा चलाउण दी इजाजत दित्ती। आईपीएल क्रिकेट विच सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स नूं 5 विकटां नाल हरा के प्लेऑफ विच अपनी थां पक्की कर ली है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ते नॉर्वे नूं व्यापार ते आर्थिक भाईवाली समझौते तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की पूंजीकारी के टीचे नूं हासिल करन ते भारत विच 10 लाख रोजगार पैदा करन लई कोशिशां करनियां चाहीदियां ने। प्रधानमंत्री कलौसलो विच कराए गए भारत नॉर्वे व्यापार ते खोज शिखर सम्मेलन नूं संबोधन कर रहे सन। वली अह शहजादे हाकोन ते प्रधानमंत्री योनस कहर सतुर भी इस शिखर सम्मेलन च शामिल होए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार ते आर्थिक भाईवाली समझौते TEPA दे लागू होने दे बाद दवल्ले व्यापार ते पूंजीकारी च वाधे दी शलाघा कीती।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरी तब्दीली से जोर दिंदिया देश के विकास, वधदी ऊर्जा मंग, जलवायु वचनबद्धतावां, नवियाउण योग ऊर्जा, ग्रिड संरचना, हरे हाइड्रोजन ते साफ

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 को प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

बाद ने चेन्नई सुपर किंग्स नू 5 विकटां नाल हरा के प्लेऑफ विच अपनी थां पक्की कीती है। ये सन हुण तक दे FM न्यूज़ हेडलाइंस। अगला प्रोग्राम बस हुण तो कुछ कु पलां दे इंतजार ते।

नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी रिफ्रेशिंग एंड एनर्जेटिक ट्यूसडे मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत कर दिया जी तुहाडा सारिया दा जिन्हां जिन्हां ने एफएम रेनबो नु ट्यून कीता होया जी 102.7 ते 102.7 ते यानी 103.6 ते, यानी कि AIR अमृतसर, और इसी फ्रीक्वेंसी दे जरिए सरहद पार तो जुड़दे ने प्यारे प्यारे दोस्त, उन्हां दा भी स्वागत कर दिया जी। निग्गा जिहा स्टूडियो दे विच काफी ठंडा ठंडा मौसम है, बाहर काफी निग्गा वैसे। और जेहड़े दोस्त सानू न्यूज़ ऑन AIR ऐप दे जरिए ट्यून करके बैठे ने, तुहाडा भी तह दिलों स्वागत करदे हां जी। थैंक यू बहुत बहुत तुहाडा ट्यून करन दे लई, तुहाडा ते मेरा फेवरेट वाला रेडियो स्टेशन। और फिलहाल तुसी सुन रहे हो माइक दे इस पार मेरी आवाज, यानी कि तुहाडी दोस्त पूजा टहानी दी। सो आरजे पूजा दे नाल फिलहाल शुरू करन जा रही हां शो। हैं आरजे पूजा दे नाल मैं ही ते हैं, मैं तुहाडे नाल आ, यानी कि सो मेरे नाल तुसी शो एंजॉय करूंगी, तुहाडा ते मेरा फेवरेट वाला शो। भाई देखो, ओ शो जिस नाल हर दिल नू ए लगदा है कि शायद ओ पंजाबी है। शो सुन के ते ऐदे लगदा ना, शो दे विच करदे हुंदे दिल दीआं गल्लां, और दूर दूर बैठे जिन्ने भी इस शो दे नाल कनेक्ट करदे ने दिल तो, वो अपने आप नू पंजाबी समझदे ने। वैसे मैनू लगता पंजाबी जरूरी नहीं है पंजाब च ही तुसी रहिंदे हो, मैं हमेशा ये गल कहनी हाँ भाई पंजाबी ते वाइब है दिल दे विच, पंजाब दे लई अगर तुहाडी थोड़ा जिहा है ना कनैक्शन, इमोशन एंड फीलिंग, तो बस तुसी पंजाबी हो। पंजाबी गाने पसंद करदे हो तो बस तुसी पंजाबी हो, तो बस वे तुहाडा ते साडा फेवरेट वाला प्रोग्राम है जी दिल अपना पंजाबी। सो इस प्रोग्राम दे विच तुसी की करना है, तुसी अपने फोन नू चकना है। हाँ जी, इदी जिदा मैं हुण फोन चक के अपने हाथ च फड़ लिया है, और इसनू पहला अनलॉक करना है, फिर इस ते जाके तुसी सोशल मीडिया दे जरिए एप्स नू इस्तेमाल करके, यानी कि व्हाट्सएप ते साडे ऑफिशियल नंबर ते सेंड करना है मैसेज। मैसेज सेंड करन दा तरीका बड़ा सौखा जिहा है, जिथे रिकॉर्डिंग दी ऑप्शन आउंदी है उथे अपना प्यारा जिहा मैसेज रिकॉर्ड करके मैनू सेंड कर देना है तुसी। लेकिन नंबर दस दिनी हाँ, नंबर है जी 98-55-10-10-27, यानी कि 9855-101027। मैसेज बहुत ही लंबे ना करियो प्लीज, क्योंकि फिर बाकिया की वारी नहीं आती। 5-5, 8-8, 10-10 मिनट के मैसेज नहीं करने। पिछली बारी मैनू आया सी बहुत लंबा, 4 किश्तों के मैसेज, एक बारी 5.5 मिनट का सी, फिर 3, 3.5 मिनट का सी, 2.5 मिनट का एक होर मैसेज सी। तो प्लीज है ना अपने मैसेज शॉर्ट एंड क्रिस्प रखियो। शॉर्ट एंड क्रिस्प दे नाल की हुंदा है, बाकी अन्नी वारी आ जांदी है टाइम दे नाल, वरना बेचारे वेट करदे रह जांदे ने। और 9:55 तक ही प्लीज़ मेरे को मैसेज भेजियो, क्योंकि उस तो बाद टाइम नहीं बचदा ना। सो मेरे को जिन्ने मैसेज पहुँचाए जाएंगे, मेरी कोशिश हुंदी है उन्ने मैसेज मैं जरूर ऑन एयर कर देवां। तो चलो चको अपना फोन, लेकिन मैसेज की करना है वो तो सुन लो। भाई देखो, प्यारा जिहा दिन है, और आपां पंजाबी भी हाँ, तो मैनूं लगता कि इस प्यारे जिहे दिन दे विच थोड़ी जिहियां पुरानियां जिहियां गल्लां याद कर लईए, तो पुरानियां गल्लां दे विच मैनूं बचपन दियां गल्लां याद आउंदियां ने, तो उहदे विच याद आउंदा है जदों खेडदे हुंदे सी आपां रल मिल के। याद आया बहुत सारे खेड इदां दे हुंदे सी जदों आपां खेडदे हुंदे सी। लुकण मीची तो चलो ठीक है, मैं तो वह भी खेडदी हुंदी सी, ऊच नीच करके कुछ हुंदा सी, मतलब जिन्हें कुछ उच्चा जहा कहता उन्हें थले छाल मार के खड़े हो जाना, मतलब असी ना ये लभना होंगे कि पौड़ी कितने है, एक बन्नी जी कितने है, जिन्हें नीच कहा उन्हें ऊंच ते चढ़ जाना। मैनू नहीं पता तुसी खेडे कि नहीं खेडे, पता नहीं मेरे पिंड ही खेडते होंगे सी, तुहाडे खेडते होंगे सी, किहड़ियां किहड़ियां गेम्स खेडते होंगे सी, खेडा बचपन दियाँ 2-4, 1 अद्धी दस दौ। लेकिन ये गल मैं क्यों की है, क्यों

0: आया है अगला वॉइस मैसेज
1: आबादी दुनिया दे दोस्तां नूं
0: जी
1: निमाणा जिहा श्रोता उदे चंद्र
0: जी
1: सारयां दी मंगल कामना करदा होया
0: जी
1: सारयां नूं नमस्कार आखदा है। अज रेडियो रेनबो दे मोर्चे दी कमान साडी धीराणी पूजा टोहानी ने संभाली होई है।
0: जी
1: साडी इस धीराणी दी आवाज ते शब्दां दे उत्ते डूंगी पकड़
0: जी
1: इन्हां दी शख्सियत दा परिचय अपने आप दिंदी है।
0: शुक्रिया जी।
1: सोना बड़ी महंगी धातु है ते औरतां दी सब तो पहली पसंद। इस धातु दे बड़े जेवर पाए जांदे ने पर जदों इस सोने दे जेवर कन्नां च हत्थां च गले विच पाण तों बाद चमड़ी नूं एलर्जी करन ते फिर कोई नहीं पाउंदा इहनूं। तां इह ते सियाणिआं ने आख्या है कि पठ पवे सोना जिहड़ा कन्नां नूं खाए। परिवर्तन संसार दा नियम है पर इस मोबाइल ने ओह परिवर्तन लियांदा है कि फायदा घट ते नुकसान ज्यादा ने। इस शैतानी पुरजे ते चार लाइना कहन जा रहा हां, सुनो भी ते विचारना भी जरूर। तेनू क्यों बनाया सी ते तू की कर छड़िया है? तू दिलां नूं जोड़न आया सी, तू ते सब कुछ तोड़ ही छड़िया है। उम्मीदां दे सागर बन्ने सी तेरे नाल, तू ते हर सागर नूं सुका ही छड़िया है। हुण कोई नहीं सुनदा नवे जम्मे बच्चे दी किलकारी, सब कुछ ते सारयां नूं वखाण दी करदे ने तैयारी। उस मासूम दे निक्के ते नरम हत्थां नूं वेखण दी किसे कोल वेल नहीं हैगी। लाइक दे अंगूठे पिछे पागल हो गई दुनिया सारी। तू ते रूहानी दुनिया दा रिश्ता पता नहीं केड़ी मशीन नाल जोड़ छड्या ए। प्यार मुहब्बत दे नगमे फसाने हो गए, प्यार दीआं गल्लां नूं जमाने हो गए। नाल रहिंदे ने जेड़े हर पल, ओ नाल नहीं रहे। दिल दे रिश्ते बने सी मिंटो मिंटी पुराने हो गए। तू ते दिलां विच आके नदी दा रोखी मोड़ छड्या ए। हुण ना ते किसे दी कोई सुनदा ए ते ना ही किसे नूं कुछ कहिंदा ए। जिथे दुख सुख वंडने सी आपस विच, उत्थे वी इंसान धौण नूं झुका के गवाचा ही रहिंदा ए। हुण ना ते बाहर दी गल हुंदी ए ते ना ही अपने घर दी, ना गलियां दी कोई खबर ए ते ना ही अपने शहर दी। ग्रुप ते वड्डे वड्डे बना ले पर परिवार छड्ड ही छड्या ए। की असी इंसान कर सकदे सी, की जानिए की तकदीर हो गई। जिंदगी दे मौत दा तमाशा ही बना दिता तू ते तेरी बदौलत ही तमाशा वेखण वालियां दी भीड़ हो गई। तू ते कल्ले पण विच इस तरह छड छड्या ए कि लोकां विच जिंदगी दा दामन ही छड्या ए। तेरे विच ते कोई जान नहीं, तेरी भी की गलती है? जदों खुद मन ते हत्थां ते इंसान दी नहीं चलदी है, दुनिया अपने चिंगारी नाल ही सड़दी है। हुण ते किन्नी भी कोशिश कर लो, गल ए ना बनदी है। इक रौंदा आपे ही सजाया सी, अपने हत्थां नाल तोड़ छड्या है। असी तेनूं क्यों बनाया सी ते तू की खर्च छड्या है? ते तू की खर्च छड्या है? मोबाइल दे गुलाम ना बनिए ते ना ही विज्ञान नूं शैतान बनाइए। रब राखा रब राखा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी बहुत वधिया मैसेज आना शेयर किया, थैंक यू सो मच। चलते हैं अगले वॉइस मैसेज दे बाद।
2: दिल अपना पंजाबी, मैं राजू टुटेजा कुरदल पिंड गोविंदगढ़ माझी वाला तहसील श्री करनपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो एफ एम रेनबो ते दीवाना। हाँ जी पूजा टवानी मैडम जी, बहुत बहुत नमस्कार। मिठी मिठी मिठी तरबूज वर्गी नमस्कार, क्योंकि
0: तरबूज वर्गी मतलब हेल्दी वाली।
2: गर्मी बहुत पै रही है
0: जी,
2: ते गर्मी विच तुसी ते सारे दोस्त अपना बचाव रखो।
0: ठीक है जी।
2: इस पार ते उस पार दे तमाम दोस्तां नूं बहुत बहुत यानी बहुत बहुत यानी नमस्कार।
0: अच्छा जी।
2: तो हमेशा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। हाँ जी पूजा टवानी जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत ही वधिया ते लाजवाब लग रहा है। ते पूजा टवानी जी, अज तुहाडे नाल काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि कुछ ही कुछ मजबूरियां सी ते प्रोग्राम तां हर रोज सुनदे सी ते लेकिन मैसेज नहीं कर सकदे सी।
0: ओके। ते
2: अज जिवें ही तुसी आए तो उवें ही सानूं बहुत खुशी हुई। जिवें कहिंदे ना, आंसुओं में न ढूंढना मुझे, दिल में हम बस जाएंगे, अगर तमन्ना हो मिलने की तो तेरी बंद आंख में आ जाएंगे। हाँ जी पूजा टवानी जी, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, लाजवाब चल रहा है। इस पार से उस पार से दोस्तों से जो मैसेज आ रहा है सुन के आनंद ही आ रहा है। गर्मी के बीच जिवें तुसी कहा सी ना, गर्मी बाहर बहुत यानी ठंडी ठंडी हवा कूल कूल है, लेकिन बाहर निकल के वेखो कितनी कूल कूल है, यानी गर्मी बहुत ज्यादा पै रही है। दोस्तों अपना ते अपने आप का बचाव रखो, ते पशु पक्षियों वास्ते पानी की दाने की व्यवस्था भी करो, तो बहुत ही चंगा है इस गर्मी के बीच पशु पक्षियों वास्ते जो इंसानियत सेवा है, इंसानियत के नाते हर एक जानवर जी जानवर की यानी सहायता करो। थैंक यू, धन्यवाद पूजा मैडम जी।
0: थैंक यू जी, थैंक यू। और जल्दी देना मेरे तो पहला, मेरे तो काली थी अगले।

0: मजेदार गर्मा गर्म मौसम है, लू अपने पूरे जला जाए, इस करके कवर करके निकलो ताकि लू ना लगे, खास करके सिर कवर करके बाहर निकलो। और अपने पानी जरूर रखो भाई, डिहाइड्रेटेड नहीं होना है। चलो जी आप चलते हैं हुण प्रोग्राम दे विच अगले वॉइस मैसेज दे वल, ते सुनते हैं जी कित्थों आया है।
1: मैडम पूजा टोहानी जी, सत श्री अकाल, रिशम सिंह गिल, पिंड चाकोड़ा, नेड़े सुल्तानपुर लोधी
0: जी, बहुत बहुत स्वागत।
1: मैडम मैं एक थोड़े नाल गल करनी, जिहड़े टॉपिक ते तुसीं गल करन बारे कहा।
0: हाँ जी
1: मैडम, कहिंदे इक ना स्कूल दे विच किसे च बच्चा पढ़दा सी, और टीचर ओहनूं कहिंदा कहिंदा काका पढ़ाई च ते तूं मुश्किल नहीं चल सकदा
0: जी,
1: ते तू इदां करिया कर, सेहत भी तेरी किन्नी कमजोर आ, तू कुछ खेडिया कर। कहिंदा कहिंदा सर जी मैं बहुत खेडदा जी, मेरे जिन्ना कौन खेडदा। ओह कहिंदा काका तेरी सेहत तां नहीं लगदा तू खेडदा होएगा।

किया है, एक और एक मिल जाए तो बन जाते हैं 11। वाह वाह वाह वाह, एक और एक मिल जाए तो बन जाते हैं 11। खा लो, हंस लो, पी लो, जी लो, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अरे भाई, अगले जन्म में पता नहीं कौन से जंगल में कौन सी नदी में यहाँ पड़े मिलेंगे, करके इक्को ही जिंदगी मिली है, छोटी जी लाइफ है ना, इन्हें एंजॉय करना चाहिए। और एंजॉय तो वैसे तुम एफएम रेनबो ट्यून इन करके कर ही रहे हो, और इस सफर नगे बता रही है कौन। तो 10:50 के 3 मिनट 50 सेकंड हो चुके।

तो देखो वही चल रही है, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से फिर 12 किश्ता दे विच जिंदगी मिली हुई है जनाब। और ये जड़ी इंस्टॉलमेंट है ना जिंदगी दी, कमेटी दी नहीं कह रही हूं मैं, जिंदगी दी कह रही हूं, ये लाइफ दी इंस्टॉलमेंट चलती ही रहेगी। जरूरी है कि इन्हां दे विच ना बस दिन दे विच कोई एक किश्त, कोई एक इंस्टॉलमेंट अपने बस अपने नाम कर लिए। ब्रेक की गल चल रही है और फिर देखो वापस वो ब्रेक आ गया कि जो भी टाइम चल रहा है 9 to 2 का हो, 2 to 6 का हो, 6 to again 9 का हो, है ना जी। इस टाइम दे विच ना बस कुछ सेकंड्स या फिर कुछ मिनट्स असी अपने लिए जरूर कढ़िए और ना मिनट से विच ना सेकंड से विच कोई गीत सुन लिए, कोई गीत लिख भी सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया, कोई वधिया जी रेसिपी बना के भी खा सकते हैं या फिर कितने बाहर एक छोटी जी वॉक शॉक करके भी आ सकते हैं, टॉक शॉक भी कर सकते हैं, ये थोड़े ते डिपेंड करता है। फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ जी, अगला गीत इंजॉय कर रही हूँ और थोड़े नाल मिलके ही करांगी। स्टे ट्यून्ड, दिल से दिल तक।

जदों आप रस्ते दे देखो चल रहे हैं, बाहर निकल गया रस्ते तो अलावा आप सब कुछ देख लेने हैं, लेकिन वो रस्ता ही नहीं देखते जिथे आप जाना है ना जी। चलो रस्ता देख भी लिया, तो सामने कुछ ट्रैफिक लाइट्स हैं वो भी सानू नहीं नजर आती, कि आ रही है, मैनू लगता है आ रही है ना, थोड़ा जा कह रही है लाइट की बस 15-14-13-12-11 सेकेंड जो रह जाती नहीं ना उदो बस स्पीड जी है ना बस वो फड़ लेंदी है जी, होर भी ज़्यादा डबल स्पीड है लगता बस जिमें कोई ना कोई मिसाइल थोड़े पिछे लग गई है तो तुम बस हूँ भजना, तो थोड़ा जहा इंतजार कर लो और अगे पिछे दाएँ बाएँ देख के ही गड्डी चला लिया करिए, तो बहुत वधिया हो साडे सारिया लई ना जी। सो इंतजार कर रहा हुंदा तुहाडा भी कोई करे जाके और तुहानू कोई वधिया करके बाय करके है ना जी, जदों भी आपां घरों बाहर निकलदे काम ते जा रहे हैं तो कोई एक चेहरा समाइल कर देवा साडे पिछे आंदा है कहिंदा चलो ठीक है जल्दी मिलांगे है ना जी शाम नू जल्दी आना। उन्हां सारिआं दे लई बहुत जरूरी है जो भी रूल्स बनाए गए ने, मैं बार बार अगैन हमेशा ही कहनी हाँ कि फॉलो करिए आप, ज़्यादा ना सही देखो 20-40-60 सेकेंड ही होंगे ने, रुक जाइए बस फिर की होया काम से पहुँच ही जावे फिर की होया 5 मिनट लेट हो गए, जेकर बॉस की डांट भी खा ली तो भी कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन रूल्स जरूर फॉलो करिए। फिलहाल फॉलो कर रहे हो तुम प्रोग्राम गीत बहार और अगला गीत है जी जावेद अली ते इंडू पांडे की आवाज़ स्टे ट्यून्ड।

सो मैं यहाँ जी रिचा ही है 102.7 FM रेनबो दी और एंजॉय करियो तुसी प्रोग्राम गीत बहार। और वैसे तुसी भी हो सकदे हो मेरे नाल जुड़ सकदे हो, पता ही है तुहानू 11 बजे तो लेके 12 बजे तक प्रोग्राम पंजाबी तड़का एंजॉय करोगे मेरे नाल। 0181 2342 174 नंबर नु डायल करके नवे नवे दोस्तों नु भी आज मौका देना है, सुन लो पहला ही, ठीक है जी। सो नंबर मैं अनाउंस कर देता है 0181 2342 174। और गल्लां बातां भी होणगियां उस प्रोग्राम च बहुत सारियां, तुसी मैं पहले क्या तुसी जुड़ोगे मेरे नाल, ठीक है जी। सो फोन करना है और व्हाट्सएप के जरिए नहीं करना, नॉर्मल कॉल करनी है और प्रोग्राम दे विच मेरे नाल जुड़ जाना है। फिलहाल चल रहा है गीत बहार और गीत बहार दे विच एक फोन दी बेल बज रही है, चलो पहले इसनू अटेंड करते हैं, उस तो बाद मिल रही हूँ तुहानू सिर्फ इतने।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नार्वे व्यापार ते खोज शिखर सम्मेलन विच भारत एफटा समझौते तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर दे निवेश ते 10 लाख नौकरियां पैदा करन दा सद्दा दिता। प्रधानमंत्री अज तीजे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन विच सारे 5 नॉर्डिक देशां दे नेतावां नाल मुलाकात करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर नूं भारत दा मजबूत आत्मविश्वासी ते समर्थ राष्ट्र बनन दा प्रतीक दस्या। जस्टिस यशवंत वर्मा नाल संबंधित इल्जामां दी जांच कर रही जजां दी जांच कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नूं अपनी रिपोर्ट सौंपी। पश्चिमी बंगाल सरकार ने माली बेनेमिया दे मामले विच आरजी कर मेडिकल कॉलेज दे साबका प्रिंसिपल संदीप घोष दे मुकदमा चलाउण दी इजाजत दित्ती। चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ के पेट्रोल पंपा ते ईंधन दी राशनिंग दी कथित अस्थाई शुरुआत संबंधी गुमराहकुन ते फर्जी खबरां दा खंडन करदिया कहा है कि पेट्रोल जां डीजल दी विक्री ते कोई पाबंदी जां सीमा लाउण संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच वोटर सूचियां दी विशेष गैन सोध दे मद्देनज़र भारतीय चोण कमिशन ने अधिकारियां दी एक टीम ने चंडीगढ़ दा दौरा किया। पंजाब पुलिस वालों 3 वख-वख कार्रवाइयां विच 10 पिस्तौलां 2 किलोग्राम तो वध हैरोइन ते नकली भारतीय करंसी समेत 7 मुलजम गिरफ्तार। गैंगस्टरां दी वार मुहिम ते 198वें दिन पुलिस दीआं टीमां वालों 271 व्यक्तियां नूं 3 हथियारां समेत गिरफ्तार किया गया है, जिस नाल कुल गिरफ्तारियां की गिणती 30,250 हो गई है। लोग एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93-946-93-946 राय गुप्त रूप विच लोड़ींदे अपराधियां ते गैंगस्टरां बारे सौ दे सकते ने। पंजाब समेत उत्तरी भारत च गर्मी दा कहर जारी है ते आईपीएल क्रिकेट विच सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स नूं 5 विकटां नाल हरा के प्लेऑफ विच अपनी थां पक्की कीती। एसन हुण तक दीआं एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

म्यूजिकली आवाज आकाशवाणी एफएम रेनबो की हाल चाल है जी। रेनबो सुनन वाले हो 102.7 एफएम रेनबो ट्यून इन किता होया और इस टाइम आवाज सुन के सारियां दे दिल दे विच टूल दी आवाज आए हाय हाय हाय उदे नाल नाल एक होर चीज जेड़ी है दिल दे विच आ चुकी है कि किवें आपा रेनबो दे नाल जुड़िए और अपनी आवाज नु रेडियो ते लेके आईए, नाल ही नाल रेडियो दे उस पार जो बैठी है दोस्त उदे नाल किवें करिए दिल दीआं गल्लां बातां ते फरमाइशां पूरियां। सो 01812342174 जिन्हां नूं ये नंबर पता है थोड़े जे पिछे हो जाओ क्योंकि नवे नवे दोस्तों नूं भी मौका दे देना चाहिए है जिंदगी दे विच। सारा कुछ जो नवा नवा कुछ होंदा ना तो बहुत वधिया लगता है। उवें ही प्रोग्राम दे विच जो नवे नवे दोस्त जुड़ते हैं और नवीं नवी फरमाइशा लैके साडे कोल पहुँचते हैं तो सानूं भी बहुत वधिया लगता है। सो रिचा दे नाल तुसी करोगे जी ए वाला शो इंजॉय हुण ठीक दोपहर दे 12 बजे तक। सो पूरा एक घंटा साडे कोल है ना जी। फरमाइशा मैं लवांगी तुहाडियां और तुहाडे नाम नूं भी आपां हुण रेडियो ते लैके आना है, तुहाडे नाल गल्लां बातां करनियां ने और बहुत ही खास चीज़ दे भी अज आपां गलबात करांगे। की कुछ है वो सो दसांगी तुहानूं, लेकिन मैं कह रही हाँ जय स्वामी जी कह रहे ने जी मेरे नाल इस प्रोग्राम की शुरुआत कर लो ते उस तो बाद मिल रही हाँ तुहानूं सिर्फ इत्थे स्टे ट्यून्ड।

0: बाने बनाता रहा है।
1: भोजन दीजिए
0: हाँ ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, इतनी वाली लाइफ है ना, चलती रहनी चाहिए।
1: चंगा लगा जी,
0: चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जी जी जी शुक्रिया। गीत केड़ा सुनना है तुसी कुलविंदर जी? ठीक है जी, ठीक है, सरदूल सिकंदर की आवाज़ से तुहाडी जिहड़ी फरमाइश है मैं जरूर पूरी करांगी। ते उस तो बाद किहड़े दोस्त साडे नाल जुड़ रहे जी, प्रोग्राम पंजाबी तड़का दे विच इंतजार कर रही है जी, मैं तुहाडा कौन है स्टूडियो दे विच टाइम, रिचा बैठी हुई है और तुसी भी मेरे नाल जुड़ सकते हो 01812342174 नंबर नूं डायल करके। स्टे ट्यून्ड।

0: अच्छा
1: जी मैडम जी, उसने कहा कि ना मैंने तैयार किया फिल्म लगी थी बहुत देर तक 4-10 दिन में चली, ते हफ्ते 2 दिन घरों को वो कर।
0: अच्छा ठीक है मतलब जाते सी पढ़ाई करन ते फिर जाते जाते वो रास्ता थिएटर वाल मुड़ जाता है।
1: हाँ जी फिल्म बहुत बार फिल्म देखते हैं।
0: ओके ओके ओके तुम्हारी आवाज़ आज मैंने थोड़ी जी प्रॉब्लम कर रही है। चलो खैर अपनी फरमाइश दस दो मैनू।
1: दलेर मेहंदी जी ने फिलहाल
0: ठीक है जी ठीक है। दलेर मेहंदी की आवाज़ से इन्होंने सुनना है जी अपना गीत। मैं दोस्तों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी तुम सूँ कॉल कर दो ना अपना थोड़ा जहा आले दुआले देख लिया करो है ना। कई बार नैटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है तो थोड़ी आवाज़ स्टूडियो तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। देखो कितनी मेहनत करके तुम स्टूडियो तक पहुँचते हो, थोड़ी कॉल लगती है इन्ने सारे दोस्तों के बचो है ना जी, तो वे कॉल लग रही है तो कोशिश कराया करो कि मोबाइल के नैटवर्क देख लो कि सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिलहाल आ रहा है जी अगला गाना दलेर मेहंदी की आवाज़ के, इंजॉय कर दिया। स्टे ट्यून्ड पंजाबी तड़का चल रहा है जी, प्रोग्राम का नाम दिल से।

102.7 FM रेनबो और 12:04:15 की सोच रहे हो डुंग डुंग करके आवाज आ रही है दिल से कि हाय रिचा आ गई है ते हुन इदा पिटारा जिहड़ा है खुलेगा ते इस पिटारे च बहुत सारियां चीजां हमेशा मैं कहनी हां तुहाडे लई लेके आनी हां जी कुछ टिप्स कह लो छोटे छोटे कुछ DIY है ना हैक्स जो आप खुद कर सकते हैं दैट इज डू इट योर सेल्फ जो असीं अपने लैवल ते ट्राई कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं और अपने सोहणे जिहे घर नूं होर वी सोहणा जिहा बना सकते हैं जी क्योंकि होम दे नाल बनता है जी ये प्रोग्राम होम स्वीट होम और स्वीट स्वीट वॉइस दे नाल स्वीट स्वीट होम दे नाल आप बहुत सारे स्वीट देखो चीज़ां घर दे विच बना भी सकते हैं और नाल ही नाल अपनियां गल्लां बातां दे विच थोड़ा जिहा शायद खोल के ना सामने वाले नूं ये भी दस सकते हैं कि ये जिहड़ी चीज़ है ना मैं रेनबो ते सुनी सी है ना सो खुशियां दा खजाना बनता लाइव रेडियो स्टेशन 102.7 FM रेनबो जिहदे नाल तुसीं वी इस प्रोग्राम दे जरिए कदी ना कदी कुछ नवा ट्राई कर लेना चाहिए हो सकता है कि तुसीं वी कोई तरीका है ना और अपने घर नूं तुसीं किवें साफ सफाई मतलब रखते हो सोहणा जिहा बना के रखते हो या तुहाडे कोल वी कोई नुस्खा हैगा दादी नानी वाला या कोई खास रैसिपी तुसीं अज बना रहे हो जी अपने किचन दे विच तो मेरे नाल शेयर कर सकते हो 98 55 10 10 27 हाँ जी 9855 1012

गर्मी दे दिनों की गल करा तो दैट इज़ टैनिंग, है ना। देखो कोई भी हो, जॉब परसन हो, जॉब पर जा रहा या फिर हर तरीके का काम करने वाला इंसान है, टैनिंग ना सानू हो ही जाती है। और खासकर जदों आप देखो फेस नू कवर कर लें, है ना, अपने हैंड्स नू भी कवर कर लें। और एक गल कर दी, जदों आप कोई शूज़, गर्मियों के अमूमन शूज़ नहीं पाए जाते, लेकिन जो आप चप्पलों पा के घरों बाहर निकल रहे हैं, थोड़े जे सैंडल पा के, तो की होंदा, सैंडल्स जिहड़े निशान है ना पैरों के उत्ते, वो छप जाते हैं। मतलब कि वह उन्ना पार्ट टैनिंग का शिकार हो जाता है जिदे, मतलब जो सैंडल नू कवर करता एरिया तो ठीक है, जो नहीं कवर कर रहा है, आप भी देखते हैं साढ़े पैर, है ना, तो वो बिल्कुल देखने से बड़े अजीब जे लगते हैं कि निशान जिहड़े ना सैंडल ने छड्ड दिते हैं साढ़े पैरों के, है ना जी। सो उन्होंने आप किवें, मतलब दूर तो चलो नहीं कर सकते थोड़ा टाइम तक, लेकिन एक चीज़ है जो अप्लाई करिए तो थोड़ा जा फर्क पै सकता है। तो ये जिहड़ी सैंडल वाली टैनिंग है ना जी, शूज़ वाली, चप्पलों वाली टैनिंग है, इनू दूर करने लिए एक छोटा जहा घरेलू नुस्खा ही है, कह लो दादी नानी वाली, याद आ रहा है वो नुस्खा, थोड़े नाल शेयर करांगे लेकिन इस गीत तो बाद में।

हाई हील्स हो या फिर फ्लैट ही क्यों ना हो, चप्पल बड़ी सोहनी लगती है ना। सोहनी सोहनी चप्पल आप पाने अपनी ड्रेस नाल मैचिंग करती हुई, लेकिन जब टैनिंग हो जाती है, निशान जो पै जाते हैं, तो फिर पछताने भी आ कि आए हाय आ की हो गया कि हटूगा। सो बहुत सारे तरीके आप अप्लाई करते हैं उस टाइम पर, है ना। वधिया वधिया ब्रांड के जिन्हें भी प्रोडक्ट्स ने वो भी अप्लाई करके देख लेते हैं, लेकिन ना कोई रिजल्ट जहाँ नहीं मिलता। सो एक तरीका है, नुस्खा ही कह लो, बड़ा वधिया कमाल का नुस्खा है और अप्लाई कर सकते हैं आप। करना क्या है कि 2 चम्मच बेसन लेना है। देखो बेसन आप यूज़ करते हैं या अपनी स्किन दे ले बहुत

माय गॉड, मैं कह रही हूँ जी मेरे पड़ोसी भी बड़े ही अजब गजब है, और अजब गजब बताए काम जड़े हो करते रहते नहीं, क्योंकि कई बार लोगों को देख के लगता है कि है आ की करता पे, लेकिन एक्चुअली दे विच ना वो चीज़ जड़ी है ना बहुत कम आ जाती है साढ़े, और उसको देख के आप भी कहते कि चल ठीक है आप भी ये तरीका ट्राई कर दें। हूँ तुम कहोगे कि अजब गजब तरीका रिचा लैके आई है हूँ। सो देखो अपने घर के बहुत सारिया चीज़ा आप इस्तेमाल करते हैं, और वह ना कई बार होंगे कि वो चीज़ थोड़ी चीज़ तो रह जाती है। हूँ मैं साबुन की गल करा, देखो साबुन जो आप सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं हैंड वॉश करने के लिए, तो कई बार की होंगे कि छोटे छोटे टुकड़े ना साबुन के वो बच जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, तो आप करते हैं कि उन्होंने आप बस टाटा बाय बाय डिस्कार्ड कर देना कि जाओ तुम हूँ साढ़ा साढ़ा साथ इतने तक ही सीगा। लेकिन जनाब हूँ समर वेकेशन भी आ रही है ना, और बच्चों ना कुछ ना कुछ तरीके चाहिए, कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ क्राफ्ट का काम कह लो या फिर कुछ भी स्किल कह लो। सो क्यों ना आप इन्हों बचे हुए जोड़े कि ये साबुन के छोटे छोटे जे टुकड़े हैं इन्हों के जरिए आप एक नवा लैफ्ट ओवर इन्हों समान के जरिए आप एक नवा ही जोड़ा हैंड वॉश है वह तैयार कर दिए, वह भी बस थोड़े जे समान के नाल, और बच्चों इस काम के लगाइए। सो दैट एक तो नवा एक देखो चीज़ सीखे है ना कि किमें आप एक हैंड वॉश बना रहे, उन्होंने बड़ा इंट्रस्ट आएगा इस चीज़ के। दूजा ये जो वेस्ट आप जिन्हों आप वेस्ट कह रहे हैं ना, ये तो भी आप बेस्ट लै लेना, कहें ना कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। सो ये घर अपना होममेड हैंड वॉश किमें तैयार करना है और की समान चाहिए ये समान मैं तुम्हें दस रही हूँ, थोड़ा जहा नोट कर लो, कॉपी कढ़ लो। हूँ मैं अच्छ रैसीपी नहीं दस रही हूँ, तुम रैसीपी बनाने बह जाओ। हूँ मैं तुम्हें दस रही हूँ कि घर जो लैफ्ट ओवर सोप ने साबन के टुकड़े ने उन्होंने जरिए आप एक नवा हैंड वॉश किमें तैयार कर सकते हैं। सो समान देखो ज़्यादा नहीं चाहिए, ऑब्वियसली साबुन के जोड़े छोटे छोटे पीसिस बचे हुए हैं उन्होंने आप थोड़ा जहा सामभ के रख लिए, और समर वेकेशन हजे भी थोड़ा बस करीब ही है, नेड़े ही है, तो एक फन एक्टिविटी भी हो जाएगी बच्चों के नाल। सो उन्होंने

जुगाड़ू तो वैसे आपा नंबर वन आ, है ना जी, कोई भी काम हो कोई भी चीज हो जुगाड़ आपा लगा ही लैने आ। सो हुण जुगाड़ लगा रहे हैं जेडे लैफ्ट ओवर साबुन यानी कि सोप के टुकड़े साढ़े घर के बच गए सी। हुण मैं बड़ी कमाल की एक DIY एक्टिविटी तुहानू दस रही हूँ, बच्चों के नाल समर वेकेशन से भी आप ट्राई कर सकते हैं और अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं एक फन दे लई, और जो वेस्ट चीज़ है बस उसका भी कुछ ना कुछ बेस्ट हो जाएगा। सो कुछ बचे हुए जेडे साबुन के टुकड़े सके आप लेते हैं और 2 कप पानी लेना, ठीक है जी, साबुन के अकॉर्डिंग पानी घट या वध भी कर सकते हैं। और एक छोटा चमचा, मैं तुम्हें पहले कहा सी ग्लिसरिन का आप लेना, तो आप लेना जी एक छोटा चमचा नींबू का रस, ठीक है, नींबू पानी ना बनाने बह जाइए, मैंने पता गर्मी बहुत है, बना भी सकते हो लेकिन उसमें साबुन ना मिला लियो कितने। चलो जी हुण बनाना किवें है, जिहड़े कि अपने छोटे छोटे ऑब्वियसली जो भी पीसिस रह गए ने सोप दे, उन्होंने आप करना ग्रेडर के ना ग्रेड मतलब कि कद्दूगस करना, यानी कि या फिर छोटे छोटे टुकड़ियों एक्चुअली तोड़ लेना बिल्कुल, ठीक है जी। तो उस तो बाद की करना है पानी के पानी जरा अपना 2 कप पानी लेता उन्होंने गर्म करना है, उबालना नहीं है और बहुत गर्म भी नहीं करना, बस एक हल्का जहा जिमें गर्म हो जाए तो जो भी सोप के टुकड़े ने उन्होंने पा के और चंगे तरीके हिलाना स्टार्ट कर देना, सो दैट जो साबुन है ना वो पानी दे विच मिक्स हो जाए। ओके, सो जो वो वधिया तरीके दे नाल मिक्स हो गया तो उस तो बाद उदे विच जो भी एक चमचा आप ग्लिसरिन का लिता है तो एक चमचा आप लिता है नींबू का रस, वो मिला देना है। क्यों मिला रहे हैं ये चीज़ा आप ग्लिसरिन तो नींबू, ग्लिसरिन जो है अपने हाथों में देखो सॉफ्ट जहा रखन से वो मदद करेगी, तो नींबू जो है ना रस वो एक हल्की जी लाइम जी इफेक्ट खुशबू जो है ना फ्रैगरेंस है वो देगा। सो बस हूँ एक खाली जी लिक्विड बोतल आप पहले ही लीती है ना लिक्विड की हैंड वॉश की, पुरानी कोई बोतल रखी हो या फिर कोई भी बोतल जिदा आप यूज़ कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं, तो वो जोड़ा अपना तैयार किया है ये अपना हैंड वॉश होम मेड हैंड वॉश उन्होंने पा देना है। हूँ इतने गल नोट करने वाली ये है कि जेकर बहुत ज़्यादा गाढ़ा जहा लग रहा है ना, बहुत मतलब साबुन ज़्यादा हो गया है पानी घट है, तो मैं पहले किया अपने अकॉर्डिंग उन्होंने पतला कर सकते हैं पानी पा सकते हैं, और अगर पतला हो गया पानी बहुत ज़्यादा तो थोड़े जे साबुन इस्तेमाल करे हुए बचा के रख लो। हूँ ये मम्मी का दिमाग ना खाना शुरू कर दे कि मम्मी साबुन दे दो आज ही तोड़ तोड़ के असं होम मेड हैंड वॉश बनाना है। मैं लैफ्ट ओवर दी यानी कि जो बच जाते हैं टुकड़े उन्होंने सुटन की थान पर आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं बच्चों के नाल गल कर रही हूँ, है ना जी। सो कमाल का लगता है इदा का फन करना और एक्टिविटी करना बच्चों के नाल, और मैनू भी वधिया लग रहा है। अगला गीत सुनना अमित त्रिवेदी की आवाज़ से, स्टे ट्यून्ड।

सो एंजॉय कर रहे थे तो ये गीत, और इस गीत तो बात आपा करना की है, कुछ नहीं करना जी, प्रोग्राम होम सी डोम नू टाटा बाय बाय करना, लेकिन रिचा कहते भी नहीं जा रही है, मेरा थी थोड़ा साथ जुड़िया हुआ दोपहर से 2 बजे तक, सो प्रोग्राम होम सी डोम दा हुन बिल्कुल आखिरला गीत आपा सुनते हैं जी, विशाल ते श्रेया दी आवाज दे विच, ते उस तो बाद 1 बजे आ रही हां तुहाडे कोल, लग रहा प्रोग्राम, लाइक स्टे ट्यून्ड।

म्यूजिकली आवाज आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.7 एफएम रेनबो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर दे दोस्तां दा वी हुण असीं स्वागत कर रहे हां जी। सो एक बजते ही प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ की शुरुआत कर रही हूँ और बहुत सारे दोस्त इस टाइम है ना हो सकता है इस

पता था, मैंने भी नहीं है कि क्यों किया करते हैं, बट हाँ एक्चुअली मोहब्बत कितनी नहीं जानती, ये तो हो जानती है ना, और कभी कभी मोहब्बत का जोड़ा अंजाम होता है वो बढ़िया नहीं होता, या कभी कभी होता है कि मोहब्बत जिहड़ी है सफल हो जाती है। खैर जो भी होए, ये जिहड़ी मोहब्बत है ना दुनिया दे विच, ये जिंदा रहती है हमेशा साडे ख्यालों दे विच, साडे दिल दे विच, और हो सकता है तुहाडे नाल भी कभी कुछ इस तरह होया हो। चलो फिर उन्हें याद करो और मोहम्मद रफी की आवाज़ नू एंजॉय करो।

मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती।

वैसे ये लाइन ना मुझे वाकई बढ़िया लगी कि ये दुनिया उसी की जो प्यार कर रही है। और प्यार देखो, प्यार करेंगे आप, प्यार नाल गल करेंगे किसी नाल, ताही तो सामने वाला साढ़े कोल बैठे।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

सो गाने दा तां मैनूं पता नहीं पर हाँ चलते चलते तुसीं FM रेनबो ते जरूर पहुंच चुके हो और वाकई वधिया लगता है जदों किसी दा साथ सानू मिल जांदा है और उहदे नाल चलते चलते आपां वी किते ना किते एक वधिया मुकाम ते अपनी मंजिल ते पहुंच जांदे आ। मिंडी मेलोडीज प्रोग्राम इंजॉय करियो तुसीं जी 102.7 FM रेनबो ते और गीत की तरह ही देखो कदे कदे साडी जिंदगी च भी कोई आ जांदा है ना जी और उसके नाल फिर अपना जिंदगी का पूरा सफ़र असी चाहते हैं कि बस इदा ही खुशियां वाला जिहड़ा सफ़र है ना वो लंघता रहे और थोड़ी जिंदगी कोई आया तो इस गीत के जरिए उन्होंने याद करो तो इंजॉय करो।

बहार बनके एक सोनी जी याद बनके और यादा दी पोटली चू यादा दे पिटारे चू है ना जी, एक सोनी जी याद हो सकता है इस टाइम इस गीत के जरिए थानू भी कोई आ गई हो, क्योंकि जो तो सफ़र चलता है ना किसी हम सफ़र दे नाल और वो सफ़र बहुत सोहना हो जाता है। फिर यादा की गल करा तो वो एक तो बाद एक याद जी है ना जुड़ती जी है चढ़ी चलती चली जाती है, कड़ी जी है ना वो जुड़ती ही चली जाती है। सो ही सिलसिला चल रहा है जी यादा का और मिडे मेलोडीज़ गीतों का जो सिलसिला वो भी चलता ही रहेगा और आशा के गीतों की आवाज़ प्रोग्राम

दो बज के एक मिनट हो गए ते वेला हो गया दिल आज शायर प्रोग्राम दा जिदे विच तुसी अपनियां लिखियां हुईयां शायरी साडे नाल सांझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लिख के सानू भेज सकते हो। साडे व्हाट्सएप नंबर 9855101027 ते। उदासी विच लिखे उन्हां लफ्ज़ां दी जो सिर्फ शब्द नहीं हुंदे, वह किसी दे चुप चाप बह गए हंजू हुंदे ने, किसी दी अधूरी कहानी हुंदे ने, ते किसी दा दिल दा बोझ। दोस्तों जो इंसान बहुत खुश होवे वह हस लैंदा है, नच लैंदा है, दुनिया नाल गल्लां कर लैंदा है, पर जदों दिल अंदरों टुट रहा होवे, अंदरों अक्सर इंसान चुप हो जाता है, तो उही चुप्पी कई बार शायरी बन के कागज़ से उतर जाती है। शायरी सिर्फ अल्फाज का महल नहीं हुंदा, ये वो आवाज़ हुंदी है जो जुबान नाल निकलती नहीं, ये दिल तो निकलती है। किसी शायर ने बहुत सोहनी गल कही है, दुख जद हद तो लंघ जावे तो वह लफ्ज़ां दे रूप विच अपना लैंदा है। तो सच पुछो दुनिया दियाँ सब तो गहरिया शायरियाँ जिहड़ियां ने अक्सर उदासी विच ही लिखिया गई ने, क्योंकि जो दिल टुटदा है ना तो उदो इंसान नूं अपने आप की असली आवाज़ सुनाई दिंदी है। कई बार असी किसी की शायरी पढ़ते हाँ तो लगता है जिवें इह साडे दिल की गल है, ते हुण तुहाडे दिल की जिहड़ी गल है शायराना अंदाज़ दे विच शायरी के माध्यम नाल तुसी सानू भेज सकते हो 9855101027 साढ़े व्हाट्सएप नंबर पर। शायरी अज जिहड़ी आपां प्रोग्राम दे विच शामिल करांगे वह होवेगी दर्द की, दुख की, उदासी की, क्योंकि हर बार आपां कहीं ना कहीं मुहब्बत की, प्यार की जिहड़ी शायरी ने या अपने किसी भी जो आप फील करते हैं साडे इमोशंस जिस तरह के होंगे आ वो शायरी अपने प्रोग्राम विच आप शामिल करते हैं, तो टॉपिक भी उही लेंदे आ दिल आज शायर प्रोग्राम दे विच। लेकिन अज जिहड़े तुसी सानू मैसेजेस भेजने ने अपनी शायरी जिहड़ी लिख के तुसी सानू भेजोगे वो थोड़ी जी उदासी, किसी की याद, किसी की लई तड़प, दुख, दर्द, ये जिहड़े वर्ड्स ने इन्हां दे रिलेटिड तुसी सानू शायराना अंदाज़ दे विच शायरियां भेजनियां ने। तो अपना नाम तुसी जरूर मैनशन करना है, कितों तुसी सानू शायरी भेज रहे हो ये भी मैनशन करना है। जे तुहाडी दोस्त प्रोग्राम सुन रहे ने ते उन्हां नू बोलो वो भी सानू वक्रा मैसेज भेज सकते हैं सारे प्रोग्राम दे विच। लो जी मैं तुहाडा इत्थे इंतज़ार करांगी, फिलहाल आपां सुनदे हां मुहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ दे विच मुझे दर्द दिल का पता ना था, तुहाडी सारियां दी रेडियो सैट ते।

जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, पहले घंटों बातें होती थी, अब सीन तक नहीं आता। और यही चीज धीरे धीरे इंसान को खामोश बना देती है। बिल्कुल सही गल है, जदों पहला जदों नवा नवा प्यार हुंदा है, इजहार हुंदा है, साडे विच एक क्यूरियोसिटी हुंदी, सानूं पता लगे कि सामने वाले दा नेचर किस तरह दा है, उहदे नाल गल्लां हुंदियां ने, रात नूं गल्लां हुंदियां ने, दिने जदों भी सानूं टाइम हुंदा सानूं ख्याल आंदा है कि हाँ उस परसन तों पुछदे हाँ कि की हाल चाल है, अपना जिहड़ा अपनी फीलिंग्स ने उह उहनां नूं दसदे हाँ। लेकिन कई रिलेशनशिप्स दे विच या फ्रेंडशिप दे विच इदां हुंदा है कि बाद च वो जिहड़ियां चीज़ां ने वो उदां दियां नहीं रहिंदियां, बहुत चीज़ां चेंज हो जांदियां ने। इन्होंने लिखा है माई फेवरेट शाहिन मैडम आरजी, स्पेलिंग इन्होंने मेरे थोड़े थोड़े थोड़े जे गलत लिख दिते ने, लेकिन कोई गल नहीं, आपां एहसास जिहड़ी फीलिंग्स ने इमोशंस ने वो समझते हैं। अगे इन्होंने लिखा है गरीब इंसान की जिंदगी भी अजीब होती है। किस तरह अजीब होंगी है, सपने बड़े होते हैं लेकिन जब जेब छोटी दिल साफ होता है, लेकिन लोग इज्जत पैसों से करते हैं और हर दिन मेहनत करता है, थकता है, गिरता है, फिर भी घर वालों के सामने मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता होता है अगर वो टूट गया तो पूरा घर टूट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद मुजफ्फर जी सानू मैसेज भेजन वास्ते। दिल आज शायर प्रोग्राम दे विच अगे जेड़े सानू बाकी मैसेजेस आए हैं फटाफट मैं थोनू पढ़ के सुनांदी आ। साडे जेड़े शायर लिसनर्स ने उन्होंने सानू की लिख के भेजा है। अगे सानू मैसेज आया है जी बलविंदर सरा पिंड मोरजंट सिखा हनुमानगढ़ तो, इन्होंने लिखा है मेरी जिंदगी में खुशियों का तो पता नहीं कि मेरी ज़िंदगी में खुशियों का तो पता नहीं, पर दर्द टाइम पर मिलता है। कुछ दर्द ज़िंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और ज़िंदा भी नहीं छोड़ा। बहुत बार इदा दी सिचुएशन सानू फेस करनी पैंदी है ज़िंदगी दे विच कि सानू जिहड़ा ज़िंदगी है सिखाउंदी बहुत कुछ है। कई बार आपां बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जांदे ने, साडे अंदर जिहड़ा बचपना हैगा है, जिहड़ा एक बच्चा है, जिहड़ा आपां इंजॉय करदे हां हर मूमेंट नूं, किते ना किते वह मर जांदा है, ते असीं बहुत ज़्यादा एक सीरीयस वे दे नाल दुनिया नूं लोकां नूं वेखन लग जांदे हां। ते अग्गे जी सानूं मैसेज आया जी किसी पर दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, किसी पर अगर दिल आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये किसी मैंने लगता है कि मैं मूवी दे विच भी सुनिया, ये डायलॉग भी आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ शायरी अंदाज दे विच भी है। मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र रिश्वान तिमान यशपाल तिमान श्रीमती कृष्णा इन्होंने ये सानू मैसेज भेजा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सानू मैसेज भेजने वास्ते। अगला सानू मैसेज आया इकबाल सिंह चौहान अमृतसर तो, इन्होंने लिखे है हर पल के रिश्ते का वादा है तुमसे, हर पल के रिश्ते का वादा है तुमसे, अपनापन कुछ इतना ज़्यादा है तुमसे, कभी ना सोचना कि भूल जाएंगे तुम्हें, कभी ना सोचना कि भूल जाएंगे तुम्हें, जिंदगी भर का साथ देंगे ये वादा है तुमसे। इकबाल जी जड़ा ये तुसी वादा कर रहे हो, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जिन्हें भी आप किसी ना किसी दे नाल कोई ना कोई वादा किया होएगा, बस ये है कि जिहड़ा वादा आप करते हैं वो पूरा जरूर करिए, क्योंकि कई बार इदा होंदा है कि जो आप प्रोमिस करते किसी दे नाल एक वादा करते हैं तो सामने वाला ना कितने एक्सपैक्टेशनस रखन लग जाता है, कितने ना कितने वो डिपेंडेंट हो जाता है कि हाँ उस परसन ने यह वादा किया तो वह निभाएगा जरूर। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲੀਵ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਮਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਕਬ ਸੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਥੀ, तुमसे बात करने की तमन्ना कब से मेरे दिल में थी, लेकिन मेरी हरकत तेरी फुर्सत की तलबगार रही, लेकिन मेरी हसरत तेरी फुर्सत की तलबगार रही,

इस कदर दिए हैं हसरते दीदार ने धोखे, वो सामने बैठे हैं यकी हमको नहीं है। बहुत सोड़ी जड़ी ये दर्द भरियां जड़ी शायरियां तुसी साडे नाल सांझियां कीतियां ने राम स्वरूप जी चौंक चलियां सुल्तानपुर लोधी तो सानू मैसेज आया, बहुत बहुत धन्यवाद सानू मैसेज भेजन वास्ते दिल आज शायर प्रोग्राम दे विच। अगला जिहड़ा सानू मैसेज आया है जी बहुत वड्डा इन्हां ने लिख के भेजिया है, मीन बाज़ार पिंड चौके जिला बठिंडा बसंत सिंह टेलर तो इन्होंने सानू मैसेज भेजिया है, नाल इन्होंने लिखा नोट, मेरी मम्मी का मुंडा परमात्मा के चरणों में जा विराजे, जो मेरा छोटा भरा सी मेरा हमराज सी मेरे दोस्त सी उसकी याद दे विच, किसी की याद दे विच इन्होंने ये लाइन साढ़े नाल सांझियां कीतियां ने जिहड़ी मैं हुण तुहानू सुनाण लगी हाँ। लिखते ने, तेरी बड़ी याद आई तेरे जाण तो बाद, तेरी बड़ी याद आई जाण तो बाद, कोई मिलिया ना हाण तेरे हाण तो बाद, इकले रह गए हाँ तेरे बिना जिमें इकली हुंदी किरपाण म्याण तो बाद, पता है सब ने दूर जाना है पर दिल क्यों ना समझे इन्ने ज्ञान तो बाद, जसल ता याद करूँ मरदे दम तक तेनू, मैनू याद कोई करे ना करे मेरे जाण तो बाद। बसंत जी बहुत सोहनिया जिहड़ियां लाइनस ने किसी की याद दे विच तुसी जिहड़ियां लिखियां ने बहुत खूब बहुत मज़ा आया ये जिहड़ियां लाइनस ने पढ़ के। उम्मीद करती हूँ कि जिन्हां वास्ते तुसी लिखिया है लिखियां ने ये लाइनस वह भी ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे। अगला जी सानू मैसेज आया है अजय कुमार बस्ती जलंधर तो ने लिखिया, इन्होंने रात की धड़कन जब तक जारी रहती है सोते नहीं है हम क्योंकि घर की जिम्मेदारी रहती है। बिल्कुल घर दी जिम्मेवारियां इन्नियां ने सारियां दे मोढ़ियां ते किते ना किते जदों आपां रात नूं वी सौंदे हां या दिने वी आपां जदों वेले बैठे होंदे हां या फिर कुछ ना कुछ कर रहे होंदे साडे दिमाग दे विच चल रहा होंदा है कि हाँ इन्नियां सारियां जिम्मेवारियां ने किद्दां पूरियां होणगियां, की कुछ आपां कर सकदे हां, किद्दां अपने घर मैनेज कर सकदे हां, किद्दां खर्चा चला सकदे हां, कुछ ना कुछ साडे दिमाग दे विच चलदा ही रहिंदा है।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। आज रेडियो डॉक्टर में, क्योंकि आज वर्ल्ड आईबीडी डे है और इसलिए ये कार्यक्रम आज का स्पेशल होगा। आईबीडी क्या है, इन सब के बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब स्टूडियो में।
3: थैंक यू मैम फॉर वेलकमिंग मी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर।
2: थैंक यू सर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी, और आप अपने क्वेश्चंस के साथ तैयार हुई, हमें फोन करने के लिए तैयार रहिए। मैं डॉक्टर की पसंद का एक गीत आपको सुनवा रही हूं।
4: मैंने

0: एक बार फिर आप सबका स्वागत है। प्रोग्राम है रेडियो डॉक्टर और आज वर्ल्ड आईबीडी डे है। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री। डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है, आज का ये दिन खास है बिकॉज कई वर्षों से इसको ऑब्जर्व किया जाता है आज के दिन। बहुत से लोग तो पहले यही जानना चाहते होंगे कि आईबीडी क्या है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। लेकिन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्या है, किसे कहते हैं, उसके बारे में बताएं।
1: जी मैम, ये एक बहुत ही अच्छा और बेसिक क्वेश्चन है। ऑन 19th ऑफ मे वी सेलिब्रेट एज वर्ल्ड आईबीडी डे। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज टू प्रमोट द अवेयरनेस ऑफ दिस डिजीज। आईबीडी मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लेमेटरी मतलब कि हमारे आंतों के अंदर जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उनमें लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन आ जाता है, तो उनको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। बाउल मतलब आंत, डिजीज मतलब उसकी बीमारी।
0: जी।
1: तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर दो तरीके के आंत होती है, एक स्मॉल बावल होती है, एक लार्ज बावल होती है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं। जब कोई बीमारी उसके इन्फेक्शन कर देती है लॉन्ग टर्म, उसको हम इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज का नाम देते हैं।
0: ओके। बहुत सारे फोन कॉल्स भी आने शुरू हो गए डॉक्टर साहब, बिकॉज जैसे ही लोगों ने

0: घटना की आज का विषय ये है। तो सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं और आप यहाँ पे एज अ स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं हमारे, तो हम किस लिसनर से बात कर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो, अनूप कुमार फ्रॉम रांची।
0: जी सर बताएं।
1: सबसे पहले तो हैप्पी वर्ल्ड आईबीडी डे। और सवाल पूछना था।
0: जी पूछे।
1: अमीबाइसिस डस्ट कॉज्ड बाय वाटर, अमीबाइसिस,
2: हाँ जी,
1: इसका क्योर कैसे?
2: देखिए, अमीबियासिस जो होता है ये एक कीटाणु होता है जिसके वजह से बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। अक्सर ये फूड एंड वाटर में कोई कॉन्टामिनेशन हो तो उसके वजह से हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है, इसका जो है पैरासिटिक के लिए दवाइयां आती हैं जिसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
0: जी।
2: प्रॉब्लम इनके साथ होती है कि बार बार अमीबियासिस हो जाता है तो इसलिए बार बार इन्फेक्शन हो सकती है। बट ये किसी ऑलरेडी पेशेंट जिसको आईबीडी है उसको अगर वो गलत खान पीन से होता है उसको बार बार अमीबियासिस हो सकता है, बार बार फ्लेयर अप हो सकता है। ही इज़ मोर प्रोन ये बीमारी से, क्योंकि इनकी बड़ी आंत कमज़ोर होती है, इन्फेक्शन की ग्रस्त होती है, तो बार बार ये इन्फेक्शन हो सकती हैं। तो ऐसे मरीजों को अपने खान पीन पर ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन वे में देखना चाहिए और फूड एंड वाटर का जो है खास ख्याल रखना चाहिए कि अच्छी जगह से लें और उनका केयर करें।
0: यानी कि इन्फेक्शन जो होता है, इससे जो इन्फेक्शन लगने के बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू होती है डॉक्टर साहब, इज इट दैट?
2: नो, ये प्रॉब्लम पहले से ही होती है। हो सकता है कि
0: पहले से, मतलब जन्म के साथ होती है या हेरिडिटरी होता है?
2: नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि जन्म के साथ होती है या हेरिडिटरी हो सकती है। बट ये है कि जब मालूम पड़ता है हमें तो बेसिकली हमें ये डिस्टिंग्विश करना होता है। एक एंटिटी होती है जिसको एक्यूट कोलाइटिस कहते हैं। एक्यूट कोलाइटिस मतलब एक ऐसी कोलाइटिस या इन्फेक्शन ऑफ द लार्ज बाउल जो कि 6 महीने से कम ड्यूरेशन की है। अगर कोई इन्फेक्शन या डिजीज प्रोसेस लार्ज बाउल की होती है जो कि 6 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन की होती है उसको हम क्रॉनिक कोलाइटिस या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का नाम देते हैं। कभी कभी कोई भी डिजीज जो होती है धीरे धीरे धीरे बॉडी में पलपते रहती है और एक टाइम आता है जब वो सामने आती है। जो ये सामने आती है ये ऐसा हो सकता है कि किसी इन्फेक्शन के टाइम में वो सामने आए, जैसे डायबिटीज़ भी, हाइपरटेंशन भी। ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये डायग्नोस होती है उसी दिन ये बीमारी बॉडी के अंदर पैदा हो गई। ये पहले से होती है लेकिन किसी कारण से बॉडी भी फाइट करती है डिजीज़ को दबाने में, बट एक टाइम आता है कि बॉडी नहीं कर पाती और वो अपने फ्लेयर अप करके सामने आ जाती है। ऐसे ही होता है कि किसी ने खाना पीना खाया और उसको इन्फेक्शन हो गया और फिर वो सामने आई। फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट किया, ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है 1-2 हफ्ते में एंटीबायोटिक्स या कुछ वो करके ठीक हो जाती है। बट अगर वो नहीं ठीक होती, कभी कभी 2-3 वीक, 3-4 वीक तक ब्लीडिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकती हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकती हैं, अर्जेंसी हो सकती है। तो ये सिम्टम जब 2-3 हफ्ते तक एक्सटेंड करती है तब हमें शक होता है कि ये पेशेंट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से ग्रस्त है। फिर हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन इन टर्म्स ऑफ मेजर इन्वेस्टिगेशन, इसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी मतलब कोलोन की एग्जामिनेशन। इसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जो कि जैसे हमारे गार्डन पाइप्स होते हैं, पानी देने के लिए पाइप होता है, वैसे ही पाइप होती है। उसमें लाइटो कैमरा होता है। तो पेट को साफ करने के बाद डॉक्टर्स या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ये पॉटी के रास्ते हम उस पाइप को करते हैं और हमें बड़ी आंत देखने को मिल जाती है। बड़ी आंत से हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, बायोप्सी जिसको कहते हैं, वो नॉर्मली 3 mm का बायोप्सी होता है। उसको फिर लेके हम लैबोरेटरी में भेजते हैं। लैबोरेटरी में वो माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन होता है और तब हमें पता चलता है कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से ग्रस्त पेशेंट है। ज़्यादातर कभी कभी पेशेंट शॉक हो जाता है कि मैं जो अभी तक पता नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम हर चीज़ का होता है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन हर चीज़ का होता है, तो उसमें ये पता चल सकता है। इसीलिए हमारा ये रिकमेंडेशन है किसी को भी अगर सिम्टम्स हो इन टर्म्स ऑफ लूज मोशंस, ब्लीडिंग पीआर, पॉटी के रास्ते में ब्लड आ रहा हो, पेट में क्रैम्प्स हो रहे हो, मोर देन 2-3 वीक्स ही शुड और शी शुड गो टू हिज विजिट अ डॉक्टर एंड गेट हरसेल्फ और हिमसेल्फ एग्जामिन्ड फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और आईबीडी।
0: सो यू सजेस्ट कि अगर 2-3 हफ्ते तक आपको लगातार पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेट में दर्द है या फिर लूज मोशंस हो रहे हैं, तो आप यकीनन समझें कि कहीं कोई प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर को जरूर देखें। यहां पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप जुड़े रहिए प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर के साथ।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इसके बारे में।
1: और आजकल हम ये देख रहे हैं दैट आईबीजी का एज जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ भी जा रहा है।
0: डाउनवर्ड
1: ट्रेंड मीन्स पहले हम यूजली ये सोचते हैं कि जो ये बीमारियां हैं 40 से 60 साल की उम्र में होती हैं, पर आईबीडी वैसे भी बीमारियां एक्टिव एज ग्रुप्स की हैं जो कि 25 टू 45 एज ग्रुप की है। एंड आजकल हमें ये देखने को मिल रहा है कि इवन बच्चे और पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकोगनाइज, बिकॉज इस एज ग्रुप में जब ये सिम्टम्स आते हैं क्योंकि लूज मोशंस होते हैं, ब्लीडिंग होती है,

0: तो इन बच्चों में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसिस बहुत आ जाती हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंस के साथ साथ बच्चों में ग्रोथ फेलियर्स एंड अदर थिंग्स आ जाती हैं। और इनकी जो दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं, कभी कभी इम्यूनो सप्रेसेंट चलती हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक ये चलती हैं और ये आजीवन चलती है। तो बच्चों में जब दवाइयाँ देंगे तो ऑब्वियसली कोई 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का बच्चा होगा तो उसको नेक्स्ट 40-50 ईयर्स तक ये दवाई लेनी है। तो ऐसी चीजें आती हैं और थोड़ा सा डिफरेंट होता है आईबीडी का प्रोफाइल बच्चों में।
1: आपने कहा आजीवन चलती हैं, तो ये क्या ठीक नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं होता?
0: नहीं मैम, जैसे मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, ये डिजीज भी एक क्रॉनिक डिजीज है, इसमें दवाइयाँ कंट्रोल कर सकती हैं बट क्योर नहीं कर सकती। क्योर मतलब हम समझते हैं, हमारी भाषा में, हमारे डॉक्टरी भाषा में कहते हैं कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर वो डिजीज चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस में भी 6 से 9 महीने तक दवाई देते हैं, उसके बाद टीबी खत्म हो जाती है, उसके बाद और देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट जैसे डायबिटीज है, आपको आजीवन दवाई चलेगी, दवाई से कंट्रोल हो सकती है लेकिन आज तक साइंस, इंग्लिश साइंस में वो क्योर नहीं हो सकती। मेडिसिन हाइपरटेंशन, आपको आजीवन दवाई चलेगी, दवाई लेंगे तो कंट्रोल होगा, दवाई नहीं लेंगे तो कंट्रोल नहीं होगा। ऐसे ही आईबीडी में, आईबीडी में भी दवाइयाँ चलती रहती हैं। एंड इनफैक्ट धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी की भी एज होती है, आपकी भी एज होती है, तो बीमारी की भी एज के साथ कॉम्प्लिकेशंस भी आगे आगे आएंगी, तो दवाई की डोज भी बढ़ेगी, डिफरेंट दवाइयाँ भी यूटिलाइज होंगी और आगे आगे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी। इसीलिए आपको डॉक्टर्स की निगरानी में रहना चाहिए। पर अच्छी बात ये, इसके साथ ये है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी होती है, इसमें दवाई लेंगे तो यू विल बी परफेक्टली ओके, आप एकदम हो जाते हैं। कभी कभी तो हमारे पेशेंट्स क्या है, 2-3 साल बाद जब ठीक हो जाते हैं तो दवाइयाँ बंद कर देते हैं क्योंकि इतने अच्छे हो गए। बट आमून ऐसा होता है कि वो फिर 6 हफ्ते बाद या 3 महीने बाद दोबारा उनको सिम्टम्स आ जाते हैं, दे कम बैक टू अस अगेन।
1: तो इसका मतलब कि अगर इतने लंबे समय तक आजीवन की बात कर रहे हैं आप, तो दवाइयाँ लेने का, बाकी इससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज मेडिसिन तो अफेक्ट करते हैं अगर आप लंबे समय तक लेते हैं, और कोई बीमारी भी हो जाने का डर होता है?
0: ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया। जब हम लंबे देते हैं तो नॉट ओनली दवाइयों के कॉम्प्लिकेशंस बट दवाइयों का खर्चा भी होता है, ये भी मन में रखना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो दवाइयाँ होती हैं, मिसिलामीन, ये बहुत अच्छी दवाई है। 99% पेशेंट्स में स्टेबल रहती हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सिर्फ इसमें साइड इफेक्ट फोलिक एसिड डिफिशियंसी हो जाता है, इसलिए हम हमेशा इस दवाई के साथ फोलिक एसिड देते हैं और ये चलती रहती है। लोग 5, 10, 20, 30 साल तक लेते रहे। आई हैव मेनी पेशेंट्स हु हैव टेकन टिल 15 to 20 years विदाउट एनी प्रॉब्लम।
1: डॉक्टर साहब, फोलिक एसिड से भी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है?
0: फोलिक एसिड तो एक विटामिन है मैम। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अच्छी चीजों का भी एक्सेस अच्छा है,
1: बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम में तो जरूर खिलाते हैं।
0: yes, yes.
1: और बहुत सी वेमेन को होता है ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं ये बात जानती थी कि फॉलिक एसिड से हो जाता है।
0: कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी इज ए डिफरेंट साइंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉजेज होते हैं, सो टूडे टॉपिक नहीं है। बट
1: कॉन्स्टिपेशन वो भी एक बॉबल प्रॉब्लम है। चलिए हम यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हमारे एक दो लिसनर्स फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
3: हेलो, नमस्ते मैम, मेरा नाम जतिन है, मैं आंखों से दृष्टि बाधित हूँ।
2: जी, सवाल पूछे।
3: जी, सवाल ये है, हमारे पापा के 2 दिन से लैट्रिन आ रही है मैम। ठीक, हम डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहेंगे, वो जैसे खिचड़ी भी खाते हैं, दवाई भी ले रहे हैं और ये सब कुछ करते हैं, तो उसके पश्चात भी नहीं बंद हो रही है सर।
2: लूज मोशन हो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं?
3: जी जी जी जी जी मैम, ऑफ कोर्सली।
4: कितने दिन से हो रहे हैं?
3: जी सर, डॉक्टर साहब सबसे पहले आपको नमस्कार।
4: नमस्कार जी।
3: 2-3 दिन से हो रहे हैं सर।
4: 2-3 दिन से हो रहा है। स्टूल में ब्लड वगैरह भी आ रहा है क्या?
3: नहीं, हाँ हाँ सर, एक बार आया था लेकिन आँव बन गया था।
4: तो ये तो अगर 2-3 दिन से ही आ रहे हैं, क्या ये अभी 2-3 दिन से आ रहे हैं या बहुत मतलब पहले भी रिपीटेड आ रहे हैं कि हर 15-20 दिन में ऐसे 2-3 दिन बार आ रहे हैं?
3: नहीं, हर 2-3 दिन में सुबह शाम
4: आ रहे हैं। कितने 2-3 दिन से ही आ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं हर महीने 2-3 दिन आता है?
3: नहीं सर, ओके, 2-3 दिन से आ रहे हैं। 2-3 दिन से,
4: ठीक है।
3: 2-3 दिन
4: तो ये एक्यूट इन्फेक्शन है, इसमें आप पेशेंट को ORS दे दीजिए, लोकल किसी ORS का घोल दे दीजिए और स्टूल टेस्ट करा लीजिए, उसी से पता चल जाएगा कि किस तरह सा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई और बीमारी है। ज़्यादातर ये 2-3 दिन आप और ORS देंगे और उनको दलिया, खिचड़ी, पोहा, चिरुआ, तरल पदार्थ दे देंगे तो उसी से ठीक हो जाएंगे।
2: थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हेलो।
5: हेलो
2: जी, कौन?
5: हाँ जी मैडम,
2: अपना सवाल पूछे।
5: मैडम, हमें ये पता करना है

0: गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो आए हुए हैं कि हमें सुबह सुबह मैं एक टैबलेट लेता हूँ खाली पेट, काफी लंबे समय से ले रहा हूँ, उसके बारे में पूछना क्या लेना उचित है?
1: हाँ नमस्कार जी, मैं डॉक्टर कुणाल बोल रहा हूँ।
0: अच्छा ना डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर
1: जी।
0: साहब ऐसा है, एक तो मेरे को प्रॉब्लम है खाना खाने के बाद मेरा खाना ऊपर आता है,
1: जी
0: और दूसरी प्रॉब्लम है मेरे को डकारें बहुत आती हैं,
1: जी
0: तो मैं ये जब टैबलेट लेता हूँ तो मेरे को रिलीफ रहता है,
1: जी
0: सुबह खाली पेट लेता हूँ,
1: जी
0: उसके आधे घंटे के बाद कुछ खाना पीना होता है,
1: जी
0: उससे रिलीफ जरूर रहती है मुझे,
1: जी
0: तो लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी है,
1: जी
0: खाना भी ऊपर आता है
1: जी
0: और खैर डकारें भी बहुत आती
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: लेकिन पहले जैसी प्रॉब्लम नहीं है। आप
1: ठीक है
0: बताइए मैं क्या करूं, यदि कुछ
1: ठीक
0: बता
1: है
0: दीजिए
1: ठीक
0: आप।
1: है ठीक है। तो ये आपको जो है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं GERD या गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये आम
0: अच्छा
1: भाषा में
0: अच्छा अच्छा
1: एसिडिटी और गैस एसिडिटी की बताते हैं। इसमें दो मेन, एक तो आप दवाई ले रहे हैं, दूसरा है
0: जी
1: ये जो पेंटोप्रिजोल की दवाई आप ले रहे हैं। तो ये बहुत
0: अच्छा
1: कॉमनली प्रिस्क्राइब दवाई है और जो डोज में आप ले रहे हैं, एक ही दवाई ले रहे हैं, ये आप लंबे टाइम तक ले सकते हैं। ये इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बट जिस टाइम लिमिट में कॉम्प्लिकेशंस आती है वो लंबी है। जब 4-5 साल ले लेंगे तो इसमें किडनी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, अगर 10 साल तक लेंगे तो बोन्स वीक हो सकती है। आप मेन दवाई के साथ साथ डाइट का भी थोड़ा ख्याल रखें, खट्टी चीज़ें का सेवन ना करें, जैसे नींबू,
0: ठीक
1: संतरा,
0: है जी।
1: मौसम्बी, दूध ना लें, और ज़्यादा फ्राइड चीज़ें और ऑयली और स्पाइसी
0: नहीं
1: चीज़ों का
0: खाए।
1: सेवन ना करें।
2: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, मैं एक ये मैसेज शामिल कर रही हूँ। इनका नाम अंगद यादव है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि मेरी उम्र 34 वर्ष है, मुझे गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर ने कहा था दूध नहीं खाने के लिए, मीठी चीज़ों को भी मना किया था, कहा कि मीठे से एलर्जी है। मैं 6 महीने बाद दूध पिया, मुझे चक्कर आने लगा, 5 मिनट बाद ठीक हो गया, ये क्यों हुआ क्या आप बता सकते हैं?
1: ये जो दूध नहीं पीना जो मना करना है, ये ज़्यादातर मेडिकल प्रोफेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर वो सोचते हैं कि पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। लैक्टोज जो शुगर होता है जो कि दूध में होता है, जब बच्चे होते हैं, ये माना गया है रिसर्च के द्वारा दैट आफ्टर 10 ईयर्स ऑलमोस्ट 73% ऑफ द एशियन पीपल में बिकम लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो हमारे अंदर एक एंजाइम होती है रेनिन, जो छोटे बच्चों में तो होती है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो नहीं होती, इसलिए हम दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आज इनके डॉक्टर्स ने
2: मना
1: इनको
2: किया होगा,
1: मना किया हुआ होगा।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब। और भी कुछ मैसेजेस हैं, उसे मैं शामिल कर लूं। ये संध्या गुप्ता जी का है, गजरौला उत्तर प्रदेश से। लिखती हैं,
1: जी
2: सर आर सार्कोडिस और अमाइलोडोसिस आर डिजीज ऑफ लिवर एंड इंटेस्टाइन।
1: यस दे मे बी बट दे आर मेनली डिजीज ऑफ द लंग।
2: ओके एंड ये पूछा है, इफ आई ईट एनीथिंग स्पाइसी देन आई हैव टू रश टू द रेस्ट रूम, इज इट अ सिम्टम ऑफ IBD? नाम आपने अपना लिख के नहीं भेजा है
1: यस
2: जी।
1: दे मे बी अ सिम्टम ऑफ IBD, यू नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाई अ प्रॉपर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर।
2: मुझे हाइड्रोजन ब्रीदिंग टेस्ट में मैलअब्सॉर्प्शन एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशन फाइंडिंग हुई है, एंड एंडोस्कोपी में इसोफेजुअल बल्जिंग फाइंडिंग हुई है, 3-4 सालों से भूख नहीं लगती है और बोवल मूवमेंट हार्ड होता है। बताने के लिए कृपा करें, मेरी उम्र 47 है, क्या IBD से लिंक है? नरेंद्र सिंह, हरिद्वार उत्तराखंड से।
1: ये IBD से बहुत ज़्यादा लिंक नहीं लगता बिकॉज इन्होंने जो मैल ऑब्जर्वेशन सिंड्रोम बताया है, एक बहुत छोटे तरीके में क्रोन्स डिजीज जो भी IBD का होता है, स्मॉल बावल, ये हमें थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा बाई टर्म्स ऑफ CT एंट्रोग्राफी और एंड मे बी स्पायरल एंट्रोस्कोपी करके, बायोप्सी करके, कि इनको क्या डिजीज है।
2: ओके, इकोलाई होने से क्या ये बीमारी होने का खतरा है, और इस बीमारी ये किस लिए होता है, IBD क्यों होता है, ये तो बताया अभी आपने बहुत ही अच्छे से
1: ऑटोइम्यून
2: एक्सप्लेन
1: डिजीज
2: किया।
1: होती है IBD एंड ईकोलाई से एक्सेसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मतलब बीमारी बिगड़ सकती है बट ये बीमारी कॉज नहीं करती। ईकोलाई डजन कॉज IBD।
2: ओके और ये पूछा है ककरोला द्वारका से शंकर लोध ने, कि सर माय क्वेश्चन इज, इफ आई हैव गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देन आई हैव सीवियर हेडेक, देन व्हाट एल्स इज टू बी डन बाय माय सेल्फ? सरदर्द बहुत होता है दासवाली
1: हाँ,
2: से।
1: इट इज़ वेरी कॉमन कि जैसे मैं गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज में लाइट हेडेडनेस या हेडेक या वो माइग्रेन को भी ट्रिगर कर सकता है, तो इट इज़ अ चिकन एंड एग सिचुएशन दैट हेडेक कॉजेज गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्राइटिस

0: causes headache. So you need to take treatment for both and see, control one of them at least. And also diet आपको control करना पड़ेगा. जैसे diet में अगर gastritis है तो दूध ना लें, ज़्यादा चाय कॉफ़ी ना लें, खट्टी चीज़ें ना लें. खट्टे में नींबू, संतरा, मौसम्बी, अचार, आंवला, इमली, इन सेवन ना करें. ज़्यादा फ्राइड फूड्स, बटर, घी का सेवन ना करें. राजमा, छोले, फूलगोभी ना लें. ऑयली एंड स्पाइसी फूड ना लें. ये इनको कंट्रोल करें तो शायद आपके गैस्ट्राइटिस कंट्रोल हो जाए, तो हो सकता है कि हेडेक भी कंट्रोल हो जाए.
1: बहुत बढ़िया. एक लिस्टनर से जुड़ते हैं मुंबई से. हेलो.
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं.
2: सदाशिव पालकर, नई मुंबई सानपड़ा.
1: जी, क्या सवाल है आपका?
2: सवाल है, लूज मोशन का तकलीफ है. डॉक्टर साहब को नमस्कार.
0: नमस्कार जी, सदाशिव जी.
2: डॉक्टर साहब, मुझे लूज मोशन की तकलीफ ऐसी है कि लूज मोशन ये होता नहीं है. एक दिन छोड़ के होता है तो कड़क पत्थर के जैसे तो ऐसा होता है. अगर एक दिन मैंने त्रिफला नहीं लिया तो दूसरा होता ही नहीं. दूसरे दिन त्रिफला लिया तो हो जाता है. त्रिफला न लो तो दूसरा दिन टॉयलेट होता ही नहीं. क्या समस्या हो सकती है?
0: तो ये आपको जो समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है. इसमें आप त्रिफला ले रहे हैं, लेकिन आपको नेचुरल तरीके से मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले फूड एंड वाटर को ध्यान में रखना पड़ेगा. वाटर आप करीब करीब 10 से 12 ग्लास लें, और साथ में फाइबर खाने में ज़्यादा लें. फाइबर होता है सलाद, फ्रूट्स, इन सब में होता है. तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप तीनों टाइम, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों टाइम खाने के साथ एक कटोरी सलाद का लें. इससे आपके बॉडी में फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा. हो सकता है कि अपने आप से ठीक हो जाए. साथ
2: क्या कटोरी लेना है सर?
1: सलाद. सलाद क्या
2: लेना है? सलाद, सलाद, एक कटोरी लेना है.
0: एक कटोरी तीनों टाइम, सुबह, दोपहर, रात को, तीनों टाइम खाने के साथ एक कटोरी सलाद का ले. और आप एक छोटा सा डायबिटीज और थायराइड के लिए अपना ब्लड टेस्ट करा ले, क्योंकि ये दोनों सबसे कॉमन डिजीजेस होते हैं जिससे कि ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है.
2: नहीं, मुझे सर ये मुझे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, कोई भी समस्या नहीं मुझे.
1: बहुत बढ़िया, आप सैलेड खाइए. एंड जैसा डॉक्टर ने बताया कि आपको बहुत फायदा पहुंचेगा. डॉक्टर साहब, आप डायबिटीज और इसकी बात कर रहे थे तो मुझे ख्याल आया आपसे पूछूं कि आईबीडी मुख्य रूप से किन बीमारियों की तरफ इशारा करता है? जैसे एक तो ये आपने बताया तो मुझे लगा.
0: जी, एक्चुअली ये आईबीडी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक है डायबिटीज के साथ भी और थायराइड के साथ भी, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑटो इम्यून डिजीज कहा के कॉन्टेक्स्ट में आता है. ऑटो इम्यून डिजीज मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारे बॉडी में कुछ तत्व होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं. ज़्यादातर इनका काम होता है कि बाहर से एक्सटर्नल जो बीमारियाँ या डिजीजेज आती है उनको रोकना, उनके साथ फाइट करना. पर कभी कभी कुछ कारणवश, जो अभी भी पूरी तरह से शोध नहीं पता है, बट ये लिम्फोसाइट्स बॉडी की ही डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं. तो आईबीडी में लार्ज इंटेस्टाइन बाउल को डैमेज करती है तो उनका नाम इन्फ्लेमेटरी लेवल डिजीज हो जाता है. अगर वही लिम्फोसाइट्स हमारे थायराइड ग्लैंड होता है जो कि एक हार्मोन, थायराइड हार्मोन बनाता है, उस ग्लैंड को इफेक्ट करती है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म के संदर्भ में आ जाता है. और पैंक्रियाज हमारी एक और ग्लैंड होती है जो कि स्टमक और इसके बीच में होता है, इंटेस्टाइन के बीच में, जो कि आम ज़्यादातर ये शुगर कंट्रोल करने में रहती है. अगर उनको हम वो ऑटोइम्यून डिजीज इफेक्ट करती है तो वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये इनका कॉन्टेक्स्ट है.
1: ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं.
0: कॉम्प्लिकेशंस एंड इन सब में जो इनको आईबीडी भी होती है उनको ये डायबिटीज भी ज्यादा हो सकती है, थायराइड की बीमारियां भी ज्यादा हो सकती है. और जिनको आईबीडी है, इन बीमारियां होती हैं तो वो ज्यादा सीवियर भी हो सकती है आईबीडी पेशेंट्स में.
1: क्या पाइल्स का भी प्रॉब्लम हो जा सकता है इसे डॉक्टर साहब या नहीं?
0: एक्चुअली पाइल्स और आईबीडी का एक ही कॉमन चीज है, वो है सिम्टम, कि दोनों में ब्लड आता है. बट अदरवाइज बेसिक चीज में इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है. पाइल्स हम जो टेक्निकली समझते हैं वो हेमोरॉइड्स के वजह से होता है. हमारे एनस के आसपास कुछ ब्लड वेसल्स होती है, कॉन्स्टिपेशन में वो एंगॉर्ज हो जाती है और ब्लीड करती है, उसको हम पाइल्स कहते हैं. पाइल्स इज यूजली पेनलेस, उसमें लूज मोशंस नहीं होते. इनफैक्ट उसमें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है, स्टूल्स ज्यादा हार्ड आती है, उन्हीं को पाइल्स होता है. अदर देन द ब्लीडिंग, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में पेट में दर्द होता है, पाइल्स इज पेनलेस. इसमें लूज मोशंस होती हैं, पाइल्स में स्टूल्स हार्ड होती हैं. तो एक्सेप्ट फॉर ब्लीडिंग द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एक्चुअली रिवर्स.
1: ओके, हम और भी बहुत सारे सवाल डॉक्टर से करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं ब्रेक.

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: जिंदगी भले ही रुलाए लेकिन अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे ना तो उतना रोना नहीं पड़ेगा, कम से कम जिंदगी थोड़ी आसान जरूर रहेगी, है ना डॉक्टर साहब? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक मैसेज आया हुआ है एडवोकेट वारिस अली खान साहब का, संजय नगर ऐश बाग लखनऊ से। पूछते हैं कि क्या कोलाइटिस पेशेंट को मीठा नहीं खाना चाहिए, एक सवाल है। दूसरा है, कोलाइटिस पेशेंट को क्या कब्ज भी होता है? और उन्होंने एक सिरप का नाम लिखा है कि वो ले सकते हैं क्या, जो ये नाम हम यहाँ नहीं ले सकते डॉक्टर साहब?
2: देखिए ऐसा है, कोलाइटिस पेशेंट को हम जो डाइटरी एडवाइस है वो सिंपल रखते हैं कि आपको दूध और सलाद नहीं लेना है। तो दूध इज अवॉइडेड, बट मिल्क प्रोडक्ट्स यू कैन टेक, विच इंक्लूड्स मिठाई ऑल्सो, खोया ऑल्सो, एंड सलाद नहीं लेना है, वो मना करते हैं। सेकेंड आपका सवाल था कि क्या कोलाइटिस पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी होता है। एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो कोलाइटिस में वर्चुअल होता है, इन द सेंस। मैं क्यों वर्चुअल कह रहा हूँ, इसलिए वर्चुअल कह रहा हूँ क्योंकि जब हम जाते हैं कभी कभी कोलाइटिस में म्यूकस आता है, लेकिन कभी कभी अर्जेंसी होता है एंड देयर इज अ नो शो। एंड इसमें क्या है, क्योंकि कोलोन के पता लार्ज बाउल के सतह में इन्फ्लेमेशन होता है तो वो सिग्नल्स देते रहता है कि उसमें कुछ आएगा, लेकिन देर इज नो स्टूल देयर टू एक्सपेल। इसीलिए पेशेंट को बार बार पॉटी में जाना पड़ता है एंड सिर्फ गैस के अलावा और थोड़ा म्यूकस के अलावा उसको निकलता नहीं है, तो इसको हम अर्जेंसी कहते हैं। एंड ये कॉन्स्टिपेशन जो टिपिकली हम समझते हैं कब्स, क्योंकि स्टूल हार्ड हो जाता है, एक्सपेल करने में प्रॉब्लम हो जाती है, पत्थर जैसे मार्बल पैलेट्स रहता है, वैसा कॉन्स्टिपेशन नहीं होता आईबीडी में। इट्स अ डिफरेंट कि आपको अर्जेंसी आती है स्टूल जाने की एंड व्हेन यू गो देयर इज अ नो शो कि कोई स्टूल निकलता नहीं है।
1: एक ये मैसेज है, प्लीज टेल अस अबाउट एसजीओटी टेस्ट एंड वेदर देयर इज एनी कनेक्शन विद लॉस ऑफ एपेटाइट इफ दिस टेस्ट रिपोर्ट इज हाई। दिल्ली से नाम नहीं भेजा।
2: SGOT जो है ये एक लीवर एंजाइम है जिसको हम सीरम ग्लूट AST कहते हैं। ये

0: एक लीवर का एंजाइम होता है जो कि लीवर डैमेज, लीवर डिजीज में ये एलिवेटेड होता है। तो डेफिनेटली अगर किसी को लीवर डिजीज है, एक्यूट लीवर डिजीज है, उसमें एक ऑफ सिम्टम लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, जॉन्डिस होता है, जनरल इनएबिलिटी, जनरल मलेस होता है, तो डेफिनेटली हो सकता है एंड इट नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। एंड डॉक्टर के पास जाए, उनको बताए, पूरे सिम्टम्स बताएं, कंप्लीट सिम्टम बताएंगे, तभी इनका पूरा डायग्नोसिस सही तरीके से हो
1: होगा.
0: पाएगा।
1: डू स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑल्सो ट्रिगर आईबीडी?
0: यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस दैट यू हैव टेल। आईबीडी इज कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शन एंड टेंशन, सो स्ट्रेस डेफिनेटली, एंजाइटी डेफिनेटली इसको प्रभावित करती है। एंड ये कहा भी जाता है कि ये टाइप ए पर्सनैलिटी जो कि ड्रिवेन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वो होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। एंड ज़्यादातर ये देखा गया है कि कोई भी स्ट्रेस पॉइंट आपके लाइफ में आएगा, जैसे स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्जाम्स आ रहा हो, या कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, या फैमिली में कोई अघटन हो गया हो, या ग्रीफ हो गया हो, तो भी ये जो बीमारी है ये बिगड़ जाती है, जो जिसको हम टेक्निकली कहते हैं फ्लेयर अप, अल्सरेटिव कोलाइटिस फ्लेयर अप हो जाता है, आईबीडी फ्लेयर हो जाता है। देन ऑफ कोर्स यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, यू हैव टू काम योर सेल्फ डाउन एंड यू हैव टू टेक प्रॉपर मेडिकेशंस फॉर दैट फ्लेयर अप ऑल्सो।
1: ओके डॉक्टर साहब, क्या ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है आईबीडी जिनको होता है?
0: जी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में आज ज़्यादातर जो इसकी दवाई होती है वो स्टीरॉइड्स होती है, और कभी कभी हमें लंबे टाइम तक स्टीरॉइड्स देनी पड़ती है। क्रोन्स डिजीज जो एक स्मॉल बाउल काउंटर पार्ट होता है, उसमें एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स तक स्टीरॉइड्स देनी पड़ती है। उनमें ये देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, एंड वी शुड गेट आवर सेल्फ इन्वेस्टिगेटेड इन टर्म्स ऑफ विटामिन डी का टेस्ट करना चाहिए, और एक होता है बोन डेंसिटोमेट्री और BMD, वो भी टेस्ट करके देखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का और बोन BMD अगर वीक है, तो दोनों का सोल्यूशन अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिंस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है अगर बोन्स सपोज वीक हो गई एंड कहीं पे आप गिर गए एंड फ्रैक्चर हो गया, देन इट बिकम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, स्पेशली बिकॉज IBD जो है एक्टिव, इकोनॉमिकली एक्टिव ग्रुप में होता है, 25 to 45 ग्रुप में ज़्यादा देखा गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इस चीज को ख्याल रखें एंड टेक केयर करें।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, एक और मैसेज है चाणक्य चौक गाजियाबाद से, पूछते हैं कि गर्मियों में ड्राई फ्रूट या जो व्यक्ति 3 या 4 बार चाय पीता है या कॉफी पीता है, क्या उसको भी IBD जैसी समस्या हो सकती है?
0: डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट यह है कि कॉफी या उससे गैस्ट्राइटिस हो सकती है, बट IBD का होना कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं देखा गया है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि कॉफी से IBD हो जाएगा, सो इट्स नॉट पॉसिबल।
1: ओके एंड ही 70-year-old पर्सन फ्रॉम रांची, उपेंद्र मिश्रा, वो जानना चाहते हैं कि मुझे करीब 15-20 दिनों से सुबह नाश्ते के बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, लूज नहीं होता है, नॉर्मल होता है, कृपया कारण और निदान बताएं।
0: देखिए, ये एक हमारे मेडिकल साइंस में ये कहा गया है कि जो स्टूल फ्रीक्वेंसी है वो 3 per week to 3 per day एक नॉर्मल रेंज है, जैसे हर चीज़ का एक नॉर्मल रेंज हुआ करता है। एक ये मिथ है सोसाइटी में कि अगर हम रोज फ्रेश नहीं हो रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो ये नहीं है ऐसा। इट्स नॉट दैट रोज आपको फ्रेश होना है, हर इंसान की अपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, किसी को ऑल्टरनेट डे आती है, किसी को दिन में 2 बार आती है, सो दैट इज नॉट अ एबनॉर्मल थिंग एट ऑल। जैसे किसी भी बच्चे का एज ग्रुप या वेट ग्रुप होता है, एक रेंज होता है, तो इसमें भी एक रेंज है जो 3 per week to 3 per day, तो इस केस में प्रॉब्लम तब आती है जब इस रेंज से बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी है कि आप 3 या 4 बार से ज्यादा जा रहे हैं पर डे, या हफ्ते में एक ही दिन जा रहे हैं, तो वो एबनॉर्मल है। लेकिन और दूसरा है कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंसी क्या है, एक सिंपल आकार में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, अगर वो हार्ड आ रहा है, मार्बल्स की तरह आ रहा है, पत्थर की तरह आ रहा है, यस इट्स अ प्रॉब्लम, अगर वो पानी की तरह आ रहा है, दलदल की तरह आ रहा है, इट्स अ प्रॉब्लम। तो इस केस में अगर फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, कंसिस्टेंस नॉर्मल है, सो ही शुड नॉट वरी एट हिज एज। ओनली कैवियट इज अगर वेट लॉस हो रहा है 70 साल के एज में, देन ही मस्ट गेट इन्वेस्टिगेटेड।
1: तो आप डॉक्टर से जरूर दिखाएं अगर आपको लगता है कि आपका वेट भी कम हो रहा है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया। हम लेते हैं ब्रेक।

0: से।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर और हमारे एक श्रोता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कलकत्ता से, तो हम जल्दी से उनसे बातचीत कर लें। हेलो
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछ लें।
2: मुस्तफा कमल
1: जी, क्या सवाल है आपका?
2: मेरे बवासीर हुआ है या क्या हुआ है, मेरे लेटरिंग के रास्ते में परेशानी है, लेटरिंग मेरा कोना होके आ रहा है।
1: पूछना क्या चाहते हैं जी? ये सब सुन लिया क्या?
2: हाँ, यही समस्या है मेरा, इसीलिए पूछना था एक बीमारी से मैं कैसे रिलीफ पाऊंगा और क्या क्या मुझे खाना चाहिए।
1: सुन लीजिए, डॉक्टर बता रहे।
3: नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
3: आपका जो ब्लड में स्टूल में ब्लड आ रहा है, कितने दिन से आ रहा है?
2: ब्लड नहीं आ रहा है सर, 3 साल से यही बीमारी है, मेरा ब्लड नहीं आ रहा है।
3: क्या आ रहा है?
2: मैं से अंदर कोई फूल गया होगा शायद, लेटरिन कोना होके आ रहा है।
3: लेटरिन क्या हो रहा है?
2: कोना होके आ रहा है, बिल्कुल ही
3: कोना होके आ रहा है। अच्छा
2: हाँ।
3: ये आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, आप बांग्ला में बोल लीजिए, मैं बंगाली समझता हूँ, बांग्ला बुझते भारी, आपने बांग्ला में बोलने की असुविधा होती है एक बार।
2: हाँ, আমার ওই যে লেটিন কে রাস্তাটা আছে না, যেরকম ওই ফোড়ার মতন হয়ে গেছে, আর ডাক্তার বলেছে যে ওষুধের জেরিয়ায় মনে হয় ভালো হয়ে যাবেন। এখন আমি ছয় সাত ডাক্তারকে দেখাচ্ছি, আমার হয়নি এখন।
3: আপনার কোলোনোস্কোপি?

0: হয়েছে?
1: হ্যাঁ, কোলোনোস্কোপি করেছি, যে ডাক্তারটা বলেছে, শিলিগুড়ির ডাক্তার বলেছে আপনার ফিশার হয়েছে।
0: ফিশার তো ইয়ে জো আপকো হুয়া হ্যায় ইনকো টট্টি কে রাস্তে ফিশার হুয়া হ্যায়। ফিশার হোনে পে আপকো ইসকা আগার দবাই সে নহীঁ ঠিক হো রহা তো আপকো অপারেশন করনা পড়েগা।
1: এক বার অপারেশন কিয়া থা এক ডাক্তার নে, হুয়া নহীঁ।
0: আচ্ছা, ফির আপকো মে ইয়ে বতা সকতা হুঁ আপনে নলেজ সে দ্যাট ওয়েস্ট বেঙ্গল মে সবসে বেস্ট হসপিটাল পিজি হসপিটাল হ্যায় কলকাতা মে, ওয়াহ জাকে কিসি আচ্ছে সার্জন কো দিখাইয়ে অর আপকো সলিউশন মিল জায়েগা।
2: तो बिल्कुल आप ऐसी कोशिश करें, जाकर वहां पे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं, उन्होंने बता दिया पीजी हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब, अब ये भी जानना जरूरी है कि क्या खाने पीने में कुछ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह की बीमारी से आप दूर रहें, और ट्रीटमेंट, ये दोनों चीजें आपसे जानना जरूरी है।
0: जी, आपने बहुत ही दो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछे हैं। ये खाना पीना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन IBD, और हमें जैसे मैंने आपको बताया था कि और बताया है कि दूध और सलाद थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। मिल्क हैज़ टू बी अवॉइडेड, प्योर मिल्क, बट मिल्क प्रोडक्ट्स यू कैन टेक, जैसे आप पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, छाना ले सकते हैं। प्योर मिल्क हैज़ टू बी अवॉइडेड। सेकेंड इज सैलड हैज़ टू बी अवॉइडेड, कि सलाद ना ले, उसके अलावा सब कुछ ले सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, रॉ फूड तो आपने कहा कि बहुत जरूरी है खाने में,
0: नहीं, जिनको IBD है उनको नहीं लेना। इन जनरल जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, फॉर हेल्दी लाइफ इट इज रिक्वायर्ड, बट IBD में नहीं करना। क्योंकि एक इनका IBD का पार्ट होता है क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज में क्या होता है कि स्मॉल बाउल में, छोटी आंत में स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, रुकावट बन जाती है। तो सलाद अगर आप लेंगे तो उस एरिया में जाके फंस जाते हैं, एंड दे लीड टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। दैट इज वाई हम इनको मना करते हैं कि आप सलाद मत ले, फाइबर ज्यादा नहीं ले। दूसरा जो है, आप हेल्दी डाइट ले, यू कैन टेक गुड सीरियल्स, फूड्स, ये सब आप लेते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो आपने बताया ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ट्रीटमेंट हमें ज्यादातर दवाइयां चलती हैं, और बहुत ही 5-10% में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, बहुत ही लिमिटेड केस में। वो मैं अभी 2 मिनट में आके बताऊंगा। नॉर्मली हम जो फ्लेयर अप जब होती हैं, तो हमें यूज करनी पड़ती है स्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन। और स्टेरॉइड्स आप जानते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोविड में बहुत लोगों ने स्टेरॉइड्स लिया, सबको पता है स्टेरॉइड्स के बारे में। बट हमें स्टेरॉइड्स लेनी है, शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड्स लेते हैं, यूजली हम 2 वीक्स का स्टेरॉइड्स देते हैं, और फिर स्टेप डाउन थेरेपी करते हैं, धीरे धीरे करके स्टेरॉइड्स को विद इन 6 वीक्स कम कर देते हैं। और ज्यादातर ये दवाइयां जो है होती है, मिसलेमिन दवाई होती है जो कि चलती है, एंड ये लंबे टाइम तक 1.2 ग्राम ट्वाइस ए डे या थ्राइस ए डे करके हम यूज कर सकते हैं। इट्स ए वेरी वेरी स्टेबल मेडिसिन। बट कुछ और दवाइयां भी होती हैं जिनमें कि जैसे ये दवाई नहीं काम करे, तो सेकेंडरी कॉज में हम इम्यूनोसप्रेसेंस, एजाथायोप्रिन यूज कर सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन यूज कर सकते हैं, और कुछ एक नई जनरेशन की दवाइयां आ रही हैं जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल्स, जो कि ह्यूमन एंटीबॉडीज होती हैं
2: जी,
0: वो यूज कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, एंड इट इज डेफिनेटली कंट्रोलेबल वेरी वेल। एंड कुछ ओनली टू मिनट्स लूंगा, और कुछ बहुत सीवियर केस में फल्मिनेंट कोलाइटिस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, क्रोन्स कोलाइटिस में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है।
2: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने के लिए, और हमें इतने अहम विषय पे इतनी सारी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ थे डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम समाप्त होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब अगेन।
0: थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, एंड आई विल एंड बाय ओनली थिंग, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नहीं सुनिया होएगा, चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चांदी के, नहीं चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी चटाई, है ना। ये मैनू लगता सारिया ने ही सुनिया होएगा, तो बचपन के ट्राई भी किया होएगा। वैसे टंग ट्विस्टर तो एक मैं कहती एक तरह का टास्क भी है, तो कितने ना कितने साड़ी जिहड़ी स्पीकिंग स्किल्स ने ना उन्हां दी एक्सरसाइज भी हो जाती है, बोलन की प्रैक्टिस हो जाती है। टंग ट्विस्टर साड़ी जीव लई एक जुबान दे लई एक तरह की वर्कआउट है, आपां कह सकते हैं। जदों असीं तेज साफ बोलन की कोशिश करते हैं जीव होंठ मूँह की जिहड़ी मूवमेंट है और होर भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। बहुत बार इदा हुंदा है कि बहुत इदा दी कोई गल हैगी जदों आपां फास्ट फास्ट बोलते हैं ना, कई बार साडा फंबल वज जांदा है, कई बार जिहड़े वर्ड्स ने ओह मूँह दे विच ही रह जांदे ने, सानूं पता ही नहीं लगता, बाहर ही नहीं निकलते वर्ड्स जिहड़े साडी जुबान ते तां हुंदे ने पर लफ्ज़ां दे विच आपां बयान ही नहीं कर पाते। हुण बहुत लोगों नूं कुछ इदा दे शब्द ने सही तरीके नाल बोलन विच दिक्कत हुंदी है, कोई र ठीक नहीं बोल सकदा, कोई स श स नहीं बोल सकता, लेकिन जिहड़े टंग ट्विस्टर्स ने इन्हां दी आवाज़ां दी जिहड़ी प्रैक्टिस है वह 5-10 मिनट जदों आपां बोलदे हां हौली हौली साडी जिहड़ी प्रोनंसीएशन है काफ़ी क्लीयर हो जाती। टंग ट्विस्टर तो मैं तुहानूं दऊंगी, नाल ही इहदे बेनीफिट्स की ने वह भी तुहानूं दसूंगी, तो जिहड़ा टंग ट्विस्टर मैं तुहानूं दऊंगी वह तुसीं बोल के सानूं 3 या 4 वार दसना है। जिहड़ा टंग ट्विस्टर प्रॉपर सही बोलेगा ते फिर उन्हां दी फरमाइश दा प्रोग्राम दे विच जरूर पूरी होएगी, ते जे नहीं किसे ने प्रॉपर नहीं बोलिया फिर उन्हां दी फरमाइश नहीं पूरी कीती जाएगी। लो जी फिलहाल तुसीं इंजॉय करो सतिंदर सरताज जी दी आवाज़ दे विच पैरिस दी जुगनी गीत तुहाडे सारिआं

0: चलो ठीक है मैम, अपनी अपनी
1: हाँ जी हाँ जी ठीक है,
0: अपना
1: हाँ चलो कोई गल नहीं, तुसी अपनी फरमाइश दस दो। हाँ
0: जी मैम, गीत मैंने सुनाओ अप्रैल फूल दा,
1: जी
0: बड़ा प्यारा गीत है जी। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, तो
1: वाह
0: दिल
1: जी
0: बन
1: वाह,
0: के दिल में धड़कते रहेंगे।
1: वाह जी वाह, ठीक है मुल्तानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद तुसी साडे नाल साडे प्रोग्राम दे विच जुड़े,
0: जी थैंक यू मैम, शुक्रिया जी, शुक्रिया।
1: शुक्रिया जी। लो जी मुल्तानी जी ने ता जो टंग ट्विस्टर है वो भी बोलता, लेकिन थोड़ी जी जी गड़बड़ हो गई सी, उन्होंने कहता ये तो मेरा स्टाइल है, बाबू राव का स्टाइल है, इदा करके उन्होंने कवर अप कर लिया। कोई गल नहीं, उन्होंने जी फरमाइश है आप जरूर पूरी करा, फटाफट तुम भी सू कॉल करो 0181 174 से, देखती हाँ किन्ने साडे बाकी लिसनर्स ने साडे नाल कॉल ते जुड़नगे, क्योंकि बहुत बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। हुण मैनू लगता है मैनू थोड़े फनी फनी जिहड़े टंग ट्विस्टर्स ने ना वो मैनू तुहाडे तो पुछने पैणगे, तुसी बोल के मैनू दसोगे। फिलहाल तुसी इंजॉय करो यह गीत अप्रैल फूल फिल्म दा तुझे।

प्रोग्राम तुसे एंजॉय कर रहे हो, लव यू जिंदगी अपनी दोस्त आरजे शाहिद नाल। गीत तो पहला मैं तुहाडे नाल गल कीती सी कि एक इदां दी चीज़ है जिहड़ी कि अजकल असी बहुत बार किसी नूं फ्री च दे दिंदे आ पर बहुत बेशकीमती है। वैसे मैनू किसे दा मैसेज आ गया हाँ, मैनू मैसेज आया है जी एक, और जवाब भी इन्होंने बिल्कुल सही दिता है। नाल इन्होंने लिखा, मैम शाहिन जी आपकी पेशकारी को सलाम है। मैम जी टाइम फ्री नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सही गल है। ये जो मैसेज है अगे पिछे करके देखते हैं सानू इन्हों का नाम की है। ये जो दोस्त ने इन्होंने अपना नाम तो नहीं सानू लिखा, चलो कोई गल नहीं, लेकिन बिल्कुल इन्होंने सही किया है कि जोड़ा टाइम है अज के टाइम दे विच बहुत बेशकीमती है। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ

गुजरात से सुन रहे हो लव यू जिंदगी, अपनी दोस्त आरजी शाहिन दे नाल। ते गल पकार रहे हैं एक इदा दी कीमती चीज दी, जिहड़ी कि जिन्ना मर्जी आपां ट्राई कर लवांगे लेकिन मुड़ के कदे वापस नहीं आ सकदी। समा, टाइम, वक्त। मैं थोड़े नाल जिहड़ी एक छोटी जी स्टोरी शेयर कर रही सी, जिहड़ा वो मुंडा सी दीपक नाम दा, नाम मैं थोनू हाँ पहला नहीं दस्या सी, लेकिन उस करैक्टर दा नाम आपां रख्या है जी दीपक। दीपक हर काम नू कल कल कल करदा रहिंदा सी, ते एक दिन उहदा जिहड़ा वह जिहड़ा उसका कल है वह कदे आया ही नहीं। उहदे स्कूल दा एक दोस्त सी जिहड़ा बहुत एवरेज सी स्टूडेंट, पर अज बहुत ज़्यादा सक्सैसफुल एक बिजनेसमैन बन चुकिया सी। ते वह जिहड़ा मुंडा सी उसने अपने दोस्त तो पुछया, यानी कि दीपक ने उस अपने दोस्त तो पुछया कि यार तेरे से तो मेरे तो घट टैलेंट सी, फिर भी तू इन्ना वड्डा बिजनेसमैन बन गया। तो फिर दीपक के दोस्त ने पूछा कि हाँ बिल्कुल तेरे तो मेरे तो ज़्यादा टैलेंट से फिर भी तू पिछे रह गया, आज कुछ कर नहीं रहा। तो दीपक ने किया, उसने एक ही लाइन बोली, कहिंदा कि मैं टाइम नू सीरियस नहीं लेता तो टाइम ने मैनू पिछे छड़ दिता। जदों आप टाइम नू सीरियस नहीं लेंदे तो टाइम भी सानू सीरियस नहीं लेंदा। ये लाइन सिर्फ स्टोरी लई नहीं है, जिंदगी दी रियलिटी है। अज असी एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटे आप फोन चलाते हैं, स्क्रॉल करते रहते, सोशल मीडिया से अपना टाइम वेस्ट करते रहे। हाँ, सानू इंजॉयमेंट हुंदा है, एंटरटेनिंग जड़ी हैगी चीज़ है, लेकिन एक टाइम ते आके सानू रियलाइज़ हुंदा है, जिंदगी दे उस मोड़ ते आके सानू रियलाइज़ हुंदा है कि आज जो आपा करना सी, जिस मुकाम ते आपा पहुँचना सी, उस मुकाम ते आपा नहीं पहुँचे। किस दे करके? क्योंकि आपा टाइम वेस्ट करता, रील्स देखते दे हुए जिहड़े सुपने ने वो डिले हुंदे जा रहे ने। पर याद रखो, जिस दिन वक्त हथों निकल गया ना, उस दिन रिग्रैट ही करते रह जावांगे, तो मुड़ के जिहड़ा वक्त है कदे नहीं आएगा वापस। जे असीं लाइफ च कुछ बनना चाहुंदे आ ते अज तो शुरू करो, परफेक्ट टाइम दी वेट ना करो, क्योंकि क्लॉक हमेशा चलती रहती है पर ओपरचुनिटीज़ बार बार नॉक नॉक नहीं करती तुहाडे घर दे डोर ते, तुहाडे ऑफिस ते, या जिथे भी तुसीं रहिंदे हो। हर सवेर एक नवा चांस लेके आती है, तुसी डिसाइड करो, स्लीप सोना या टाइम ते, कुछ करना या टाइम ते, उठना है टाइम ते, हर काम टाइम ते। जो आप कोई भी काम इधर टाइम ते करांगे ना, मैंने लगता एक दिन औखा होएगा, दो दिन औखे होंगे, तीजे दिन चौथे दिन करते करते सानू आदत हो जाएगी। फिर जिस दिन साडा कोई काम टाइम ते नहीं होएगा ना, सानू अपने आप इजा लाइक महसूस होएगा कि हाँ अज पूरे दिन च कोई कमी रह गई है, कुछ ना कुछ अधूरा है। ये अधूरेपन नूं पूरा करन वास्ते सब कुछ टाइम ते करना चाहिए। होर भी गल्लां बातां होणगियां, लेकिन फिलहाल आपां सुणदियां एक गीत निमरत खैरा दी आवाज़ दे विच, मैं नचदी फिरां। हाँ, मैनूं लगदा आही गीत है। ते उस तो बाद ठीक 6:20 ते तुसीं सुनोगे पंजाबी च खबरां साडे प्रदेशिक चैनल तो। फिलहाल जे तुसीं इंजॉय करो ये गीत, तुहाडे सारिआं दे रेडियो सैट ते गए।

लव यू माई एंजल केकी दी आवाज़ दे विच गीत तुसीं इंजॉय कीता है, लव यू जिंदगी प्रोग्राम दे विच इंजॉय तुसीं कर रहे हो अपनी दोस्त आरजी शाहिन दे नाल। मज़ा आया प्रोग्राम दे विच। हाँ, पर थोड़ियां गल्लां वैसे कीतियां ने मोटिवेशनल, पर जिन्नियां भी कीतियां ने मैनू लगदा बहुत वधिया कीतियां ने, क्योंकि कई बार होंदा है ना कि हाँ स्टोरीज़ दे थ्रू आपां गल्लां करदे हाँ, स्टोरीज सुनांदे हाँ, बहुत इदां दे जिहड़े लेजेंडरी परसनस ने उन्हां दी स्टोरीज़ लैके आंदे, उन्हां तों कुछ ना कुछ सीखण नूं मिलदा, उन्हां दी जिहड़ी टीचिंग्स ने वो तुहाडे नाल सांझा करदे ने, कुछ इदां दे डेली लाइफ दे नाल रिलेटिड साडे जिहड़े टॉपिक्स ने वो तुहाडे नाल सांझा करदे ने। हाँ, लव यू जिंदगी प्रोग्राम दे विच। लेकिन दोस्तों गल्लां करन दा मेरा बहुत ज़्यादा दिल है, पर फिलहाल जिहड़ा समां है वह सारिआं नूं लिमिटेड मिलिया होया है इत्थे बोलन दा। मेरा जिहड़ा एंटरटेनमेंट दा जिहड़ा मेरा पार्ट सी वह मैं कंप्लीट कर दिता है अज लई। हाँ, अज लई फिर दोबारा मुलाकात होएगी इत्थे ही 102.7 MHz FM बैंड ते। लेकिन फिलहाल अगर जिहड़ा प्रोग्राम है पेश करन वाले आरजी स्टूडियो दे विच आ गए ने, हुण ओह तुहानूं एंटरटेन करनगे। जाते जाते एक गीत तुहाडे सारिआं दे लई मैं प्ले करन जा रही हाँ, इंजॉय करो यह ट्रैक, मैनू दिओ इजाजत, नमस्कार।

एफएमआरएनएक्स 2.63 मेगाहर्ट्ज़ से है आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल और स्टूडियो दी घड़ी दे विच इस वेले 7:05 हो चुके ने ते दोस्त तुहाडा जुड़ चुकिया जी जसना जी कुलदीप जी बिल्कुल जी और प्रोग्राम तुहानू पता ही है जी तुहाडा फेवरेट वाला शुरू कर दिता गया जी फिल्मी दुनिया जी बिल्कुल जी हर रोज़ शाम 7:02 से जिहड़ा प्रोग्राम प्रसारित होंदा है जी आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल दे उत्ते फिल्मी दुनिया ओ अज शुरू कर दिता गया जी तुहाडे दोस्त कुलदीप वल्लों और अज इस प्रोग्राम दे विच असीं खास कलाकार लैके आए हैं अलग अलग कलाकार लैके आए हैं जिन्हां दा अज जन्मदिन है और उन्हां दे बारे उन्हां दी जीवन सारणी दे बारे उन्हां दे जो भी उन्होंने काम किया उस दे बारे उन्हां दे फेमस जिहड़े उन्होंने जो भी गीत ने फिल्मां ने या जो भी उन्होंने काम किया उस दे बारे असीं गल्लां करांगे और तुहानू प्यारे प्यारे जिहे गीतां नाल तुहाडा मनोरंजन भी करांगे जी। सब तो पहला शुरुआत कर लें जी क्योंकि अज कलाकार थोड़े जे ज़्यादा आ उन्होंने जीवन सारणी भी बहुत ज़्यादा आ सो इस घट समय के कवर करना बहुत मुश्किल है सो शुरुआत करते हैं जी अज साडे सब तो पहले जिहड़े सुरीली आवाज़ की मिठी पहचान मधुबाला जवेरी जी जी बिल्कुल जी भारतीय फिल्म संगीत के सुनेले दौर में कई ऐसिया गायिकावां हुई जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ नाल संगीत प्रेमियों के दिलों में अमिट छाप छड़ी। उन्हां विचों एक नाम है मधुबाला जवेरी जी। भावें उन्होंने लता मंगेशकर या आशा भोसले वर्गी वड्डी प्रसिद्धि नहीं मिली पर 1950 के दहाके विच उन्हां दी आवाज़ बहुत मिठी भावपूर्ण अते दिल नूं छूण वाली मन्नी जांदी सी। उन्होंने कई यादगार गीत गाए और अते अपने समय के कई मशहूर संगीतकारां नाल काम भी किया। मधुबाला जी का जन्म 19 मई 1935 होया यानी कि अज ही दे दिन होया सो उन्होंने सब तो पहला तो असी अज दे यानी दिन दे विच उन्होंने जन्मदिन के उत्ते सारी टीम वालों सारे श्रोतियां वालों और साडी एफ एम जलंधर टीम वालों भी उन्होंने हैप्पी बर्थडे। वो बचपन तो ही संगीत वाल रुझान रखते घर के माहौल विच संगीत संगीतक रुचि होने कारण उन्होंने छोटी उम्र तो ही गायकी सीखने का मौका मिलिया। उन्होंने आवाज़ में कुदरती मिठास और नरमी सी जिस कारण वह जल्दी ही संगीतकारां की नज़र विच आ गई। मधुबाला जी नू फिल्मी दुनिया विच लियांदा मशहूर संगीतकार हंसराज बैल जी ने। उन्होंने मधुबाला जी की आवाज़ में सुन के उस विच मौजूद संभावनावां नू पछाण लिया। फिल्म राजपूत अते अपनी इज्जत वर्गियां फिल्मों विच गायकी का मौका मिलन नाल उन्हां दी पहचान बननी शुरू हुई। उस दौर विच गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं सी सगों कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हुंदे सी। इसलिए गायकी दी आवाज़ विच अभिनय वाली भावना होना बहुत जरूरी सी। मधुबाला जी इस कला विच माहिर सी। उन्हां दी आवाज़ दी विशेषता सी कि वह भावनावां दी गहराई नूं समझदी सी शब्दां दी साफ उच्चारण सी सुरां दी मिठास और संगीत नाल पूरी तरह मिल जाण वाली लहर मिलदी सी। ओह रोमांटिक भजन विछोड़े अते लोक दुनिया वाले गीत बहुत सुंदरता ढंग नाल गाउंदे सी। उन्हां दे कुछ मशहूर गीत ने दिल मेरा तेरा दीवाना मीठी मीठी लोरियां पीपल की छाओं तले क्यों दिल पे रखा हाथ है मतलब दरबार फिल्म का यह गाना बहुत मशहूर होया सी उन्हां दा। उस तो बाद तेरा मेरा जन्म का है साथ रे आस्तिक फिल्म का देखो चंदा से खेले सितारे दोस्त फिल्म का ऐ जमाना बता दो दिलों की कथा मतलब ये अलग अलग जिहड़े गीत उन्होंने कई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए सी और उन्होंने कई संगीतकारां नाल

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: बताओ तो तुम दिन रात मेहनत करते हो, सारा घर चलाते हो, फिर भी घर वाले तुम्हारा इतना अपमान करते हैं। तुम्हें गुस्सा नहीं आता?
2: जिस पर गुस्सा करूं? घर वालों के कहने पर कहीं अपमान होता है?
1: होता है, खूब होता है।
3: हाँ जी दोस्तों, ये सी जी डायलॉग इन्हां दा स्वामी फिल्म दे विच्चों। जी गल चल रही है जी गिरीश जी दे बारे, और गिरीश जी दे बारे बहुत सारियां गल्लां ने, मैनूं खुद नहीं समझ आ रहा मैं किहड़ी गल पहलां शुरू करां ते कित्थे खत्म करां, क्योंकि इन्हां दे बारे बहुत सारियां गल्लां ने। हुण फिल्मां दी ही गल करां ते फिल्मां इन्नियां ज़्यादा ने, इन्हां दी लिस्ट एड्डी लंबी है कि मैं सारियां फिल्मां दे नाम नहीं लै सकदा, क्योंकि इन्हां ने कल्ली हिंदी फिल्मां नहीं, कन्नड़ फिल्मां दे विच वी बहुत अपना जिहड़ा योगदान दित्ता, मलयालम फिल्म दे विच, तमिल फिल्मां दे विच वी इन्हां ने काम कीता, तेलुगू फिल्म जिहड़ियां फिल्मां आ उहनां दे विच वी, और कई सारियां मशहूर फिल्मां भी है। इन्हां दे अवार्ड्स की जे गल करां तां अवार्ड्स की लिस्ट भी बहुत ही लंबी है जी दोस्तों। लिटरेचर दे लई भी इन्हां नूं तकरीबन 10 to 11 जिहड़े अवार्ड्स ओह मिले ने, और पद्मश्री अवार्ड भी इन्हां नूं 1974 दे विच लिटरेचर दे लई मिलिया सी। सिनेमा दे लई नैशनल फिल्म अवार्ड 1971 तो लैके 1999 तक इन्हां नूं मिलिया है जी। उस तो बाद साउथ जी फिल्मफेयर अवार्ड साउथ भी इन्हों मिले 1972, 1974, 1978 ते 1983 दे विच अलग अलग फिल्मों के लिए। फिर हिंदी दे लई भी 1980 ते 1982 फिल्म सी यानी बेस्ट स्क्रीन प्ले गोदुली लई इन्हों मिलिया आशा फिल्म दे लई, और तेरी कसम फिल्म दे लई भी इन्हों मिलिया। उस तो बाद कर्नाटका स्टेट फिल्म फेयर अवार्ड भी इन्हों मिलिया 1971 तो लैके 2000 तक, और फिल्मों के नाम भी अलग अलग ने। इन्हों बारे बहुत सारी लंबी लिस्ट है अवार्डा दी, बहुत लंबी लिस्ट है फिल्मों दी, और बहुत लंबी लिस्ट है इन्हें डायलॉग्स दी ली। इन्हों दी अदाकारी सच्ची बहुत ही सिंपल सादगी भरी, लेकिन उहदे विच गंभीरता दिखदी सी जी, बिल्कुल जी। गंभीरता एक जिहड़ी है वह हर किसी दे विच नहीं हुंदी, गंभीरता किसी किसी दे विच हुंदी। अपनी अदाकारी नूं गंभीर रूप नाल देखना, करना, उहनूं समझना और उहदे विच ढल जाना, यह हर किसी दे बस की गल नहीं हुंदी। और इन्हां दा जिहड़ा अभिनय सीगा बहुत ही ज़्यादा कुदरती सी, बिल्कुल जी एक कुदरती ढंग नाल अपने आप नूं मतलब अपने किरदार दे नाल ढाल लैंदे सी। डूंगी सोच है इन्हां दी।

FM 102.7 MHz से है आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल। शाम दे 8 बज चुके ने ते हुन समा हुंदा है FM न्यूज़ हेडलाइंस दा। केंद्रीय किरत अते रुजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कर्मचारी भविख निधि संगठन ने वक् वक् कानूनी फॉर्मा सामने बकाया मामलों के समय सिर निपटारे नूं यकीनी बनाउण लई उपराले तेज कीते। पंजाब दे राजपाल अते केंद्री शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा लोड़वंद विद्यार्थियों नूं विद्यक सहायता प्रदान करना राष्ट्र निर्माण वल एक शक्तिशाली कदम है। राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां कमीशन ने मरदमशुमारी कार्यां विच जातिवाचक शब्दों की वरतों के इल्जामों नूं लैके संबंधित विभागों नूं नोटिस जारी किया। पेट्रोल अते डीजल दीयां कीमतां विच करीब 90 पैसे फी लीटर दा वाधा कीता गया। पंजाब राज चोन कमीशन ने 26 मई नूं 8 नगर निगमां समेत 105 स्थानक इकाइयां लई होण वालियां अहुदियां नगर निगमां आम चोणां 2026 लई दाखल कीतियां 713 नामजदगियां रद्द कीतियां। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अप्रैल महीने विच 10 वक् वक् ट्रैप मामलों विच 12 सरकारी अधिकारियों नूं रिश्वत लैंदे हुए रंगे हत्थी काबू कीता। अमृतसर दी काउंटर इंटैलीजेंस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल वल्लों समर्थित एक मॉड्यूल दा पर्दाफाश करदियां विदेशी आधारित हैंडलरां दे 2 साथियों नूं गिरफ्तार कीता है। बीते दिनी रेलगड्डी विच मृतक पाए गए जिला गुरदासपुर दे फौजी जवान लांस नायक प्रभशरण सिंह दा अंतिम संस्कार उहनां दे जद्दी पिंड च सरकारी सन्मानां नाल कीता गया। पंजाब ते हरियाणा विच वध तों वध तापमान 40 डिग्री पार होया। मौसम विभाग वल्लों अगले 3 तों 4 दिनां विच तापमान विच होर वाधा होण दे पिशनगोई कीती है। ਅਤੇ IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से है आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल और तुसी प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी रंगला पंजाब अपने दोस्त कुलदीप दे नाल। जी अंबरसरां दे पापड़, हाँ जी सारे खांदे हो है ना जी बिल्कुल जी, पापड़ तो सारे ही खांदे ने। और ये पापड़ दे विच अंबरसर दा नाम क्यों जुड़िया होया जी, क्यों इहदा इतिहास है इहो जिहा, और इसका स्वाद बाकी पापड़ा नालों, मतलब अंबरसर दे जिहड़े पापड़ आ उसका स्वाद बाकी पापड़ा नालों क्यों वखरा है, इस दे बारे थोड़ी जानकारी देन साडे मेहमान साडे नाल जुड़ चुके ने जी। बिल्कुल पापड़ वड़ियां अमृतसर तों इह साडे नाल जुड़े होए ने जी, और ये ऑरगैनिक चीज़ां बनांदे ने, ऑरगैनिक पापड़ बनांदे ने, ते इहनां नूं आपां कॉल ते लैने आ जी। हैलो सत श्री अकाल सर जी, की हाल चाल जी? हाँ जी सर, सब तो पहला तो अपना नाम ते अपना प्रोफेशन या जो भी तुसी करदे हो उस दे बारे थोड़ी जी जानकारी दे दो।
2: जरूर, मेरा नाम अंगद है ते मैं अमृतसरी पापड़ वड़ियां दे विच डील करदा सर, मेरी मैन्युफैक्चरिंग है अमृतसर दे।
1: ठीक है जी।
2: जिस तरह की तुसी हुणे कॉल ते जिस तरह की तुसी एफएम ते दस रहे सी के ताडा अमृतसर दे पापड़ वे मैं खांदी ना ए गाना जिहड़ा फेमस होया ना सर, ए गाना फेमस ही काफी ही इस तरीके नाल होया ते बड़ा इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, मेरा काफी फेवरेट भी है ते मेनू बड़ा अच्छा लगता है, मेरे काम दे काफी रिलेटेड है।
1: अच्छा अच्छा, हाँ जी बिल्कुल जी, काम दे रिलेटेड क्योंकि तुसी पापड़ वड़ियां दा तुहाडा काम है, और ये गाना तकरीबन यानी पुराने तो सुनते ही हैं पर यह अजकल दी यूथ क्योंकि नवे रीमिक्स गाने भी इत्ते बने हुए ने ते ये यूथ नूं भी पसंद है।
2: सॉन्ग दे उपर काफी रीमिक्स भी नवे लॉन्च होए सर।
1: जी बिल्कुल,
2: रीसेंटली काफी 2-3 सालां दे विच काफी नवे रीमिक्स भी लॉन्च होए ने।
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। सो अंगद जी मैनूं तुसीं बस मतलब क्योंकि असीं नहीं जानदे कि क्यों अंबरसर दे पापड़ दे

FM 102.7 मेगाहर्ट से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल और रात दे 9:04 स्टूडियो दी घड़ी दे विच इस वेले समा हो रहा है और तुहाडा फेवरेट वाला प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी। बिल्कुल जी, दिल चाहता है प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी। और नंबर नोट कर लो जी एक बार, 9855101027 9855101027 ये नंबर तुसी नोट कर लिया, इनू कर लो सेव, फिर अपना व्हाट्सएप ओपन करो और ओपन करके अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपनी फरमाइश यानी हिंदी ते पंजाबी सोंग्स यानी मूवीज़ दे सोंग, पुरानी मूवीज़ दे सोंग जड़े आ वो सानू फरमाइश करनी है तुसी और तुहाडा दोस्त कुलदीप तुहाडी फरमाइश जड़ी आ वो पूरी करेगा। दोस्तों रेडी कर लिया जी, नंबर फिर दस देना 9855101027 9855101027। आओ सुनने प्यारा जगह, तद तक मैं थोड़ी फरमाइशां देख लेना जी।

जी हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा जी ने, और कह रहे हैं अभी अभी थी दुश्मनी लता मंगेशकर जी की आवाज़ दे विच फिल्म है जी जख्मी। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई, थोड़ी जिहड़ी फरमाइश आ और रेडी कर ली है जी असी अपने सिस्टम दे उत्ते। बाकी साढ़े जिहड़े श्रोते ने ओह भी सानू फरमाइश भेज सकते हैं, करना कुछ नहीं है जी। 9855 10 10 27 9855 10 10 27 दे उत्ते सानू फरमाइश करनी है जी, पुराने हिंदी ते पंजाबी फिल्मी गीतां दी, और तुहाडा दोस्त कुलदीप तुहाडी फरमाइशां पूरियां करन दी पूरी पूरी कोशिश जिहड़ी है वह करेगा, क्योंकि समा है उन्ना क हुंदा है और एक घंटे दे विच सारियां दी फरमाइशां तां नहीं पूरी कर सकते, लेकिन असीं कोशिश पूरी करदे हां कि सारियां दी फरमाइशां या सारियां दे जिहड़े मैसेजेस हैं वो इस प्रोग्राम दे विच असीं शामिल कर लईए। आओ सुनदे हां इन्हां दी फरमाइश कीता होया ये प्यारा जिहा गीत।

जी दोस्तों, मैसेजेस ते मैसेजेस आ ही जा रहे हैं। लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है पर समा बहुत घट होंदा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मैसेजेस जड़े हैं असी इस प्रोग्राम दे विच शामिल कर लईए। तो

हाँ जी दोस्तों, एक मैसेज आया साढ़े को जी, लिख रहे ने आरजे जी आपको आदाब नमस्कार जी, नमस्कार एनी सॉन्ग, और लिख रहे ने दनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया आयान बाबू, शुक्रिया जी एंड जी लिख रहे ने, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। एक होर साढ़े को मैसेज आया, आदरणीय मेज़बान जी नमस्कार जी, कोई भी गीत सुना दें जी, थैंक्स जी, और लिखे कि ने आदर्श नगर मलोट पंजाब तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा जी ने, और एंड च प्लीज़ लिख रहे ने, प्लीज़ लिखने की कोई गल नहीं जी, थोड़ा थोनों इन्हें इन्ने प्यारे प्यारे सोंग जोड़े थोड़े वर्गे ही लिसनर जोड़े हैं सानू रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, और असी उन्होंने रिक्वेस्ट नू एहतराम कर रहे हैं, उन्होंने पूरा कर रहे हैं जी। इस अलावा एक होर मैसेज आया साढ़े को, पिंड जजोड़ी तहसील खरड़ जिला SAS नगर तो लियाकत अली, निशा, शाहीन, यासमीन, अरमान मलिक वालों सारे आकाशवाणी परिवार को प्यार भरी सत श्री अकाल जी, सानू तुसी कोई भी गीत सुना दिओ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज करन दे लई। एक मैसेज आया साढ़े को फगवाड़ा पंजाब तो, दिल चाहते प्रोग्राम को नमस्कार, बेताब मूवी से एनी सॉन्ग कह रहे हैं जी, जरूर इन्हों की जी फरमाइश आसी पूरी करांगे। फरवीना कैले, परमिंदर कौर, कुलविंदर कौर, तारा चंद, आशु, कुनाल जल्ली जल्ली, चेतन जल्ली, रमन अंजू जी, इन्होंने मैसेज किए, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। एक होर साढ़े को मैसेज आएगी कि लिख रहे ने, पिंड के डाकखाना निमानाबाद नेड़े मनिंदो मंडी जिला जींद हरियाणा तो जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर किसी भी गीत विच शामिल करन लिए कह रहे हैं, और एंड च धन्यवाद लिख रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई। इस तो बाद एक होर मैसेज आया कह रहे हैं कि बाजीगर फिल्म का कोई भी गीत सुना दिता जाए, सुल्तानपुर तो लिखे इंद्रवीर अरोड़ा, चेतना, प्रेम कुमारी, अपेक्षा, इनायत और केशव जी ने, आओ इन्हों की जी फरमाइश आ पूरी करते हैं, बाजीगर फिल्म का एक गीत रेडी किया हो, और तुसी भी अपनी फरमाइश पूरी करवा सकते हो, करना कुछ नहीं है, नंबर है 9855101027, उस दे उत्ते पुराने हिंदी ते पंजाबी फिल्मी गीतां दी फरमाइश सानू करनी है जी, आओ इन्हां दी फरमाइश कीता होया गीत असी सुनदे हैं जी।

एक मैसेज है, साडे कोल एफएम दिल चाहता है प्रस्तुत करता जी, नमस्कार, हम भी पक्के लिसनर हैं, ये पंजाबी लाइन गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, मैनू याद आवे मेरे यार दी। पुराने पंजाबी लोक गीत टप्पे की लाइन है, लिखा है जी किरण नरुला ग्रीन पार्क कपूरथला तो जी, प्लीज जी धन्यवाद जी। एक होर मैसेज आया साडे कोल जी, बलजिंदर कौर मुकेरियां मुरादपुर जट्टा कह रहे ने जी, जगजीत मनवीर सहजवीर और कह रहे ने एंड च वेले होके बैठे हैं जी। इस तो अलावा एक होर मैसेज आया साडे कोल।

और मैसेजेस आई जा रहे ने पर समा इजाजत नहीं दिंदा। सो एक जड़ाया लास्ट मैसेज होर पढ़ लैने हैं जी। रंजू राणा, श्रुति राणा, साक्षी श्रिष्टि, धर्मवीर पिंड बुलारा लुधियाना तो मैसेज किया जी राजेंद्रपाल राणा जी ने जी। और आओ जी इस प्रोग्राम का आखिरी फरमायश, इस प्रोग्राम की आखिरी फरमायश जी वो सुनते हैं जी। जाना कितने नहीं, 11 बजे तक मैं तुहाडे नाल ही हाँ। अगला प्रोग्राम कुछ क पलों के इंतजार से शुरू हो जाएगा। इस प्रोग्राम की आखिरी फरमायश तुहाडे रेडियो सेट के उत्ते

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से है आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल। प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं जी, शामें गज़ल गज़लां वाला वो प्रोग्राम जिस विच शायरी दे नाल थानू असी मोह लैने और प्यारी प्यारी गज़लां दे नाल थोड़ा मनोरंजन करते हैं।

मुझसे मत पूछ मेरे इश्क में क्या रखा है, मुझसे मत पूछ मेरे इश्क में क्या रखा है, एक राज है जो सीने में छुपा रखा है। ज़माना जिसे बेताब मिटाने के लिए मैंने उस याद को सीने से लगा रखा है। देखने वाले मुझे दर्द मोहब्बत की कसम, मैंने इस दर्द में दुनिया को भुला रखा है।

जब भी बंद होती हैं पलकें मेरी सनम, जब भी बंद होती हैं पलकें मेरी सनम, ख्वाबों में सिर्फ तेरा ही वजूद होता है। दुआओं में मांगी है बस एक ही खुशी, दुआओं में मांगी है बस एक ही खुशी, कि मेरा हर पल बस तेरे साथ मुकम्मल हो।

वक्त के दरिया में बहुत कुछ बह जाता है, पर यादों का कारवां वही का वही रह जाता है। दूरियों का असर कभी मिटता नहीं, दूरियों का असर कभी मिटता नहीं, अपनों की खुशबू का एहसास कभी छूटता नहीं।

धड़कनों की जुबां समझता है कौन, बिन कहे दिल की बात सुनता है कौन। प्यार की राहें तो बहुत है मुसाफिर, पर इस दिल का दर्द अपना समझता है कौन। मुस्कुराहटों के पीछे छुपे हैं आंसू, इन आंसुओं की वजह जानता है कौन। नादान है ये दिल जो हर किसी पर आ जाए, नादान है ये दिल जो हर किसी पर आ जाए, पर इस नादान दिल को संभालता है कौन।

इस जीवन के रंग हजार होते हैं, इसे जीने के कई ढंग होते हैं। किसी के जीवन में जंग होती है तो किसी के जीवन से लोग दंग होते हैं। कोई जीवन के संग होते हैं तो कोई जीवन से तंग होते हैं। इस जीवन के हजार रंग होते हैं, इसे जीने के कई ढंग होते हैं। कोई जीवन के तरंग होते हैं तो कोई जीवन के पतंग होते हैं। इस जीवन के हजार रंग होते हैं, इसे जीने के कई ढंग होते हैं।